ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। आज शक संबत 1948 के वैशाख माह की 23वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 13 मई 2026 वार बुधवार, सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारे आज के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक

0: अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ठुला मारू चैनल है। 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आज का विचार। विषय होगा धर्म परिवर्तन पर बापू के विचार। वाचक स्वर हैं श्री प्रमोद कुमार शर्मा।
3: व्यक्ति का धर्म अंततः तो उसके और उसके रचयिता के बीच की चीज है, जिससे किसी और को कोई सरोकार नहीं है। लेकिन आज जो मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं, वह इसलिए कि मैं सत्य की अपनी खोज में आपकी सहानुभूति प्राप्त करना चाहता हूं, और इसलिए कि बहुत से ईसाई मित्र ईसा के उपदेशों के बारे में मेरे विचारों में दिलचस्पी रखते हैं। अतः यदि मेरे सामने केवल सर्मन ऑन द माउंट और उसकी मेरी अपनी व्याख्या ही होती,

0: तो मैं ये कहने में नहीं हिचकता कि हाँ मैं ईसाई हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस समय यदि मैं ऐसी कोई बात कहूँगा तो इससे बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाने का अंदेशा है। मैं झूठा दावा करने का अपराधी हो जाऊँगा, क्योंकि तब मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ईसाई धर्म की मेरी अपनी व्याख्या क्या है और आपके सामने ईसाई धर्म के बारे में अपने विचार बताने में मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ईसाई धर्म के नाम से जो बहुत कुछ चीज़ें चलती है वे सर्मन ऑन द माउंट के विरुद्ध है। कृपया मेरे शब्दों पर ध्यान दें, मैं इस समय ईसाई आचरण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईसाई मान्यताओं की, ईसाई धर्म की उस स्वरूप की बात कर रहा हूँ जिस रूप में पश्चिम उसे समझता है। मैं ये जानता हूँ और मुझे इसका बहुत दुख है कि सभी जगह मान्यताओं के मुकाबले आचरण में बहुत कमियां हैं, लेकिन ऐसा मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। मैं अपने अनुभवों से जानता हूँ कि हालांकि मैं अपने कथनों के अनुसार आचरण करने की जीवन में हर क्षण कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कथन के मुकाबले मेरे आचरण में कमी रह जाती है। इसलिए ये बात आलोचना की नीयत से कहने का मेरा कोई मंशा नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने अपनी बुनियादी कठिनाइयां रख रहा हूँ। जब 1893 से मैंने एक विनम्र विद्यार्थी के रूप में दक्षिण अफ्रीका में ईसाई साहित्य पढ़ना शुरू किया तो मैंने अपने आप से पूछा, क्या ये ईसाइयत है? और मुझे हमेशा वेदों का यह उत्तर मिला, नेति नेति, ये नहीं ये नहीं। और मेरे अंतर की गहराइयों से आवाज़ आ रही कि मैं ठीक हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास रखने वाला एक विनम्र व्यक्ति होने का दावा करता हूँ, और मुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो ईश्वर मुझे शक्ति देगा कि मैं उसके अस्तित्व से इनकार न करूँ, बल्कि जोर देकर कहूँ कि वो है। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह है और उसके सिवा कोई नहीं, ईसाई भी वही बात कहते हैं और हिंदू भी, और अगर कह सकूँ तो बौद्ध लोग भी यही बात कहते हैं, हालांकि भिन्न शब्दों में। हम ईश्वर शब्द की अलग अलग व्याख्या भले ही करते हों, उस ईश्वर की जिसमें हमारे यह पृथ्वी ही नहीं ऐसी करोड़ों अरबों पृथ्वियां समाई हुई है, हम तुच्छ रेंगने वाले जीव जिन्हें उसने इतना असहाय बनाया है कि हम उसकी महानता, उसके असीम प्रेम, उसकी अगाध करुणा को कैसे नाप सकते हैं। उसकी करुणा ऐसी है कि जब मनुष्य धृष्टतापूर्वक उसके अस्तित्व से इनकार कर देता है, अन्य मनुष्यों का गला काटता है, तो वो इसे ही बर्दाश्त कर लेता है। जो ईश्वर इतना क्षमाशील, इतना दिव्य है, उसकी महानता को हम कैसे नाप सकते हैं। इस प्रकार हम भले वे ही शब्द उच्चारित करें, लेकिन हम सब के लिए उन शब्दों का एक ही अर्थ होना जरूरी नहीं, और इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें अपने भाषणों या लेखों के द्वारा शुद्धि अथवा तबलीग या धर्म परिवर्तन कराने की जरूरत नहीं है। हम अपने जीवन में उदाहरण के द्वारा ही वास्तव में वैसा कर सकते हैं। हमारा जीवन औरों के लिए खुली किताब की तरह हो। कितना अच्छा हो कि मैं मिशनरी मित्रों को अपने मिशन के प्रति यह दृष्टि अपनाने के लिए राजी कर सकूं। तब न कोई अविश्वास होगा, न संदेह, ईर्ष्या और न ही झगड़े ही होंगे।
1: अभी आपने सुना आज का विचार, आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। अब आप सुनेंगे रामचरितमानस गान।
1: 27 27

ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया।

ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित ना करके उस अपमान को जैसे दोहरा कर दिया। यही कारण था कि जब सती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा, तो शिव ने बिना निमंत्रण जाना सती के शील स्नेह अथवा मान मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया। जब सती ने पिता के यज्ञ में जाने की जिद ही कर दी तो भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। उधर पिता ने सती का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। यज्ञ में सभी देवताओं के भाग की सामग्री थी, किंतु कहीं भी शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। पति की ये उपेक्षा देख अपमान से सती के अंग प्रत्यंग जल उठे, उनके क्रोध की सीमा ना रही। इस मदांधता तथा नादानी के लिए उन्होंने पिता की भर्त्सना ही नहीं की, बल्कि ग्लानि तथा क्रोध के वशीभूत होकर अपने को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर डाला।

अभी आपने सुना रामचरितमानस कांड। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 6:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। 7:30 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में आज आप सुनिए राजस्थानी कहानी तीजी आंख। कहानीकार होंगे श्री मदन गोपाल लड्ढा। 8:45

पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विकास यात्रा। आलेख और प्रस्तुति होगी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, संयोजन होगा श्री अमित सिंह जी का। 9:10 पर समय रहेगा कार्यक्रम लोक संगीत का। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। 10:00 आप सुनेंगे नई फिल्मों से गीत फिल्म संगीत कार्यक्रम में। 11:00 आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 12:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत और 12:40 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

दोपहर 1:05 पर महिला श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विशेष भेंट वार्ता। विषय होगा स्वयं सहायता समूह से बनी पोषण सखी सीमा सुलकर सीमा कोलरिया से श्रीमती मधु शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति होगी श्रीमती बरखा तानवी व्यास की और संयोजन किया है अमित सिंह ने।

हमारी संध्याकालीन सभा में 5:05 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 7:00 ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत। 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत। 9:15 पर आप सुनेगा फिल्म संगीत। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिलीज किया जाएगा। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। शौकत हुसैन खान और ख्याल पूरिया सुनिएगा रात्रि 10:30 पर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में आज आप सुनिए लघु वार्ता, विषय है बीज का महत्व और सुरक्षा। वाचक स्वर हैं डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा के।
1: राम राम। आज बात करा बीज रे महत्व और बीज सुरक्षा रे बारे में। प्रदेश में कृषि रे बीज जका है इरे गुणवत्ता पर सगला किसान भाई विशेष ध्यान देवन लाग, क्योंकि फसलारी जरूरत सारू और जलवायु रे अनुसार हर कोई चाहे है के उत्पादन ज्यादा से ज्यादा आवे। और फसलारो उत्पादन जो को है आज बढ़ोतरी होने रे पीछे बीज और इरे गुणवत्ता रो भी खासो योगदान है। अच्छी गुणवत्ता रो बीज नहीं लेने से फसल रे गुणवत्ता में भी कमी आवे। चोखी गुणवत्ता और प्रमाणित बीज अगर लेवा तो 20% तक उत्पादन रे मायने बढ़ोतरी देखी जावे। इस वास्ते जरूरी है कि आप री फसल रे वास्ते जका भी बीज लेवे ए प्रमाणित और उन्नत बीज वे। अब चाहे फसल कोई हो, धान हो, गेहूं हो, दलहनी फसल हो, राई हो, सरसों हो, सूरजमुखी हो, मूंगफली हो, कोई भी हो फसल, ए दलहनी फसल कोई भी हो, 3 साल रे मैंने इन्हें बदल बदल बुआई करनी चीजे। और ये ज्वार, बाजरा और अरंडी, राई, सरसों है, अरे सगला रे 3 साल में अगर बीज नहीं बदला और सागी बीज अगर काम

0: लेतरा तो भी उत्पादकता में कमी आवे। बीज ने उत्तम कोटि रो जद मानी जक रहे के जद वो आनुवंशिक तौर पर 100% शुद्ध हुए और सागे सागे फसल और फसल रे मैंने खरपतवार बीज नहीं होना चाहिए और रोग और कीट रो प्रभाव नहीं हुए। इसु कहीं है कि बीज री जकी शक्ति है और बीज रो जको ओज है भरपूर रेसी। बीज रे मैंने अंकुरण क्षमता जकी है बा उच्च कोटि री रेसी। इसु खेत रे मैंने जमाव और उपज जकी है अचोखी होसी। बीज प्रयोगशाला मैंने एक बार जांच हो जावे और मानक रे अनुरूप अगर वे घोषित कर देवे पछे बीरी बुआई करनी चाहिए। बीज कई तरह रा होया करे है। केंद्रीय प्रजाति विमोचन समिति है भारत सरकार री, इर मैंने बीज उत्पादित किया करे जाए इर आधार पर फसल री कई श्रेणियां बनाई जी है। जेकर मैंने पहली श्रेणी है प्रजनक बीज। ए बीज जगह है नाभिकीय बीज सु बीज प्रजनक या संबंधित पादप प्रजनक री देख रेख रे मैंने उत्पादित करी जाए। इर मैंने आनुवंशिक और उच्च गुणवत्ता रो पूरो ध्यान रखी जाए और ई आधार रा बीज रे उत्पादन रो जो को स्रोत है इर आधार पर बीज रे थेला रे माथे सुनहरो पीलो टैग लगाए कर है जके सु आपने ध्यान पड़ जावे कि ई बीज री श्रेणी किस तरह री है। दूसरो बीज है आधारीय बीज। ई बीज रो जो को उत्पादन है वो भी प्रजनक बीज सु करी जा कर है और अड़ी सारू आधारीय प्रथम और द्वितीय श्रेणी रो बीज जो को है वो काम में लियो जा सके। यूं उत्पादन संसाधन पैकिंग रासायनिक उपचार लेबलिंग ए सगली प्रक्रिया और बीज प्रमाणीकरण जकी है इस संस्था रे देख रेख रे मैंने और मानक रे अनुरूप करी जे और थेलेर माथे ई में भी टैग लाग जावे जो को धोड़े रंग रो लाग गया करे। प्रमाणित बीज जो को है वो किसान भाईर वास्ते तैयार करी जे है और वो आधारीय बीज रे बाद रे मैंने तैयार हुए और इर माथे नीले रंग रो टैग लगाया करे। अब बात करा सत्यापित बीज री। इरो उत्पादन संस्था द्वारा आधारीय और प्रमाणित बीज गारे मानकारे अनुरूपी करी जे और उत्पादन संस्था इर मथे बढ़े अलग लेबल लगा दे और ओ थेले और उत्पादक संख्या अनुसार जो है इमे भी कई जानकारियां लिखी जे। बीज री गुणवत्ता जकी है और वांछित स्तर पर वे इर वास्ते बीज प्रमाणीकरण रो प्रावधान है कि बीज जकी आपने साधन सु मिली है वो प्रमाणीकरण एक समिति हुए जांच परख करने रे बाद मैंने बीजारो प्रमाणित करें। बिर बाद रे मैंने प्रमाणीकरण जको है वो कई चरणा सु हुआ करे। सबसे पहले बीज रो सत्यापन करे के बीज प्रमाणीकरण संस्था देखे के निरीक्षण रे समय के बिरो बिल है भंडारी रसीद बिरो कई पहली रो टैग है वो देखे। इर बाद रे मैंने बिरो फसल रो निरीक्षण करी जाए जके बगत फसल पुष्प अवस्था में फसल पकने रे समय ए दो बगत कम सु कम दो निरीक्षण हुए हुए फसल जको है बी बगत खरपतवार सु दूर हुए। इर बाद आवे प्रयोगशाला परीक्षण। अबे कही है कि भी बीज ने प्रयोगशाला में लाई जाए और प्रयोगशाला में मैंने जनक बीज रे परीक्षण कर और विश्वविद्यालय स्तर पर या बीज प्रमाणीकरण संस्था री प्रयोगशाला में होया करे और न्याय दर्श अगर बीज पायो जावे जन तो भी ने प्रमाणित करने आगे भेजी और लागे के बीज जो है मानकारे अनुरूप कोनी है तो फिर भी ने निरस्त कर दे। इस सब रे बाद नवे टैगिंग एक एकड़ में जितना बीज चाहिए है बीता बीज एक थैले रे मैंने भर देवे। इन तरिया सु बीज रे माथे आपने प्रमाणीकरण मिल जावे और ये बीज ने खेती में काम में लेवा तो उत्पादकता में बढ़ोतरी हुए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती की बातें। लीजिए सुनिए लोक भजन।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुप्रभात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, सुबह का समय है, 7 बजे हैं। जरूरी है कि हम अपने सुबह के समय का इस्तेमाल अपने दिन भर की दिनचर्या में करें, अपने स्वास्थ्य के लिए,

अपने कार्य के लिए, क्योंकि सुबह का समय ही हमारे पूर्ण पूरे दिन को संचालित और सुव्यवस्थित रखता है। अगर हम इस समय को सही तरीके से नहीं संचालित करते तो फिर हमारा पूरा दिन खराब होता है। कई बार हम कहते हैं आज सुबह सुबह क्या हुआ पता नहीं, पूरा दिन खराब हो गया। तो ये वास्तविकता है, जब हम अपने दिन की शुरुआत अच्छी तरीके से करते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा और सुखद रहता है। तो हमेशा अपने दिन की शुरुआत नित्य कर्म के बाद योग प्राणायाम के साथ करनी चाहिए, जिससे कि हमारा मन शांत रहे और हम इस भौतिकतावादी युग में कुछ पल अध्यात्म के लिए निकालें, जिससे कि हमारा दिमाग शांत रहे और हमारे जो निर्णय हैं वो सटीक और सहज हो पाए। उसके साथ साथ ये जरूरी है कि हम प्राणायाम योग व्यायाम के साथ साथ अपने खान पान का भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि गर्मी का मौसम है और जहां हम रहते हैं राजस्थान और उसमें भी बीकानेर रेतीली धरती है और गर्मी का आलम बहुत है। तो इस समय में ज़रूरी है कि हम अपने हर खान पान में जल तत्व को प्रधानता दें। ऐसे फलों का सेवन करें जिसमें जल तत्व की प्रधानता हो, सलाद में जल तत्व की प्रधानता हो, छाछ नींबू पानी इन सब का समावेश करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सुबह से उठने से लेकर रात तक इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा पूरा दिन आराम से अच्छी तरीके से और सहज भाव से निकल पाएगा। और जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा ही रहता है। हमारी शारीरिक ऊर्जा, हमारा मस्तिष्क और मन संतुलित और सहमित रहता है, जिससे हमारे दिन भर के कार्य में, हमारे फैसलों में एक शांति और सटीकता बनी रहती है। इसलिए हमेशा अपने दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से करें और पूरा दिन हम अच्छे तरीके से रह पाएं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बात कुछ ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम करते हैं जिन्होंने हमारे समाज, हमारे देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व जिनकी आज पुण्यतिथि है, जी हाँ, आर के नारायण। आर के नारायण जो कि भारत के सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकारों में से एक थे, उन्होंने मालगुड़ी नामक काल्पनिक शहर पर आधारित कहानियों के लिए प्रसिद्धि हासिल की। उन्होंने साधारण भारतीय जीवन को सहज और हास्यपूर्ण शैली में चित्रित किया। उनका पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में प्रकाशित हुआ और उनके उपन्यास द गाइड के लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिला। बात करें उनकी शिक्षा की, तो नारायण साहब की शिक्षा मैसूर में हुई। उनकी लेखन शैली में अधिकांशतः

सरल, व्यंग्यात्मक और सहज मानवीय भावनाओं से भरी हुई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं स्वामी एंड फ्रेंड 1935, द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937, द डार्क रूम 1938, द इंग्लिश टीचर 1945 और द गाइड 1958 में प्रकाशित हुई। नारायण जी को पद्म भूषण 1964 और पद्म विभूषण 2000 में मिला। आपको बता दें कि दूरदर्शन का प्रसिद्ध धारावाहिक मालगुडी डेज आर के नारायण साहब की कहानियों पर आधारित था और भारतीय समाज में वो एक महत्वपूर्ण साख रखते हैं। और आज ही के दिन यानी कि 13 मई 2001 को उनका निधन हुआ। जो महान लोग होते हैं वो हमेशा हमारे जीवन में अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं और इस समाज को अपनी रचनाओं से, अपनी बातों से कुछ न कुछ देकर जाते हैं। इसलिए आज भी आर के नारायण के उपन्यास उतने ही प्रासंगिक हैं जो उस समय में हुआ करते थे।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। आज हमने पूर्व में आर के नारायण साहब के आज पुण्यतिथि के अवसर पर ऐसे ही भारतीय समाज में बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने भारत को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज 13 मई को भारत के पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी की जयंती है। आज के दिन 13 मई 1905 को उनका जन्म दिल्ली में हुआ। वो एक स्वतंत्रता सेनानी और 1974 से 77 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई।

जीना सिखा दे। जीवन जीने के कई पहलू है। जीवन वास्तविकता में जीवन जीने के कई आयाम हैं और हर आयाम पर खरा उतरकर ही वास्तविक जीवन जिया जा सकता है। कर्म भाव, परिवार भाव, अध्यात्म, सब कुछ जब एक साथ मिलाकर व्यक्ति चलता है तभी जीवन में सफल और खुश रह सकता है। अगर कर्म भाव ज्यादा है, यानी कि व्यक्ति कर्म ज्यादा करता है लेकिन परिवार का ध्यान नहीं रखता तो भी परेशानी है। शरीर का ध्यान नहीं रखता, केवल कर्म करता है तो भी परेशानी है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति अपने पूरे जीवन का एक सामूहिक समावेश कर चलता है तभी जीवन में उसे सफलता मिलती है और साथ साथ सुख भी मिलता है। वरना अत्यधिक कर्म से कैरियर तो बनता है लेकिन फिर परिवार का सुख नहीं मिल पाता, और अगर कर्म नहीं करता तो परिवार का सुख मिलता है लेकिन

उसका कैरियर नहीं बन पाता। इसलिए पूरे जीवन में समस्त बातों को ध्यान में रखकर ही हम जीवन में वो उन्नति, वो कर्मोन्नति, वो खुशी प्राप्त कर सकते हैं जो हर व्यक्ति कामना और इच्छा रखता है। जीवन की गति हमेशा सामान्य रहनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें अड़िग रहना होता है, लेकिन उसके साथ साथ अड़िगता के साथ शांत भाव बहुत आवश्यक है। जिस गति से हम चल रहे हैं, उस गति से अगर हम निरंतर चलेंगे तो साथ साथ हमें शांति और अड़िगता बहुत जरूरी है, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। अब बात जब गति की चली है तो चलते चलते आपको बता दें कि आप अगर सड़क पर चल रहे हैं तो अपने वाहन की गति धीमी रखें, आपके कंट्रोल में रखें, क्योंकि अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाने पर दुर्घटना घटित हो सकती है और कई बार दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए अपने वाहन की गति सामान्य रखें और अपने जीवन की गति भी सामान्य रखें, क्योंकि जब वाहन की गति के हिसाब से ही अगर हम जीवन की बात करें तो जीवन की गति भी सामान्य रहनी चाहिए, तभी हम किसी भी दुर्घटना के समय अपने आप को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ।

आपसे बात करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। समय अपनी गति से चलता है और हमें भी अपनी गति से चलना होता है, क्योंकि जब तक समय के साथ चलेंगे तभी हम अपनी मंजिल तक सही समय पर पहुंच पाएंगे। समय के साथ चलिए। और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को विराम देने का, लेकिन फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम सुप्रभात। आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कभी कभी से गीत। लिखा है शाहिर लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया है खयाम ने।

अभी आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म बहारे फिर भी आएगी से गीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म पेंग कैसे गीत।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी ठोला मारू चैनल है, 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्ण मूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार का

0: से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदयचंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए।

0: लिए सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने

0: कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है, सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है, 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ। संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देशबंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला। मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता, राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPI-M and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.

कोनी जानू, बनी कदी कोनी बतायो, इन सगपन ने कोई नाव कोनी दियो, बीजा दाई बोई पटवारी जी केर बतलाऊं तो, मैं उनने हैप्पी कहूं तो, सांची बताऊं तो उनरे पूरे नाम रोठाई मने परचे में देखर लाग्यो। चार दिना ताई मैं बे परचा गाड़िया में चेप्या, जात्रिया ने बांट्या, सोशल मीडिया माथे ही लगाया। आ दिना घरे गया पछे मोबाइल ने बंद करनो ही छोड़ राख्यो है। कहीं ठा कद उनरो फोन आ

एक्सप्रेस गाड़ी ने मोरनी केव तो उनरो मैसेज मांस ताई मैं शिनान सपाड़ा शुरू कर देव तो मारे शू ठीक लारले ठेसण मंडी शू गाड़ी छूटता ही उनरी लांबी घंटी आवती। जै मैं मोबाइल ऑन कर लेव तो उनरी पतली आवाज़ सुनिजती पटवारी जी बेगा पूगो। जद गाड़ी मारे ठेसण बावड़ती तद वो बारी का बारने शू हाथ काढ़ आप मने आपरे डब्बे में चाड़ लेव तो मने बिठावन सारू वो आपरो टिफन का रुमाल आगूच खाली सीट माथे मेल देव तो जै सीट नहीं मिलती तो वो आपरी जगह मने बिठावन सारू तैयार रेव तो ओ हेत फगत मारे सारू ही नी मंडी वाला मुनीम जी सरदार जी और मास्टर जी सागे ही हो। गाड़ी रवानगीरी खबर शू लेर सीट जुगाड़ ताई उनरो काम निवड़तो कोनी। पानी री बोतल अखबार और बगत टिपावन सारू तासरी जोड़ी रे बंदोबस्तरो जिम्मोई उन ले राख्यो। ओलूरा कई टुकड़ा मारे मन मगजी में इन बात मंडियोड़ा है कि जद कद फिल्म रे उन्मान आँख्या सामी आए ढूके। यार एपी तू बिचारे छुट्टी ना मारिया कर, तू नी आवे उन दिन मारी गाड़ी चूक जावे और बस मैं गया 40 रुपया रो बटीड चिप जावे। मैं कहूँ तो काम सर तो रेवणो ही पड़े पटवारी जी, बिया आप इन एंटीक पीस ने छोड़ एंड्रॉइड मोबाइल बपरा लेवो जिनसू गाड़ी री लोकेशन ठा पड़बो करे। घनी कमाई है काई करशो इतने धनरो बो हास तो क्या री कमाई है एपी, घर बसा चेतो हुई जासी। छड़ू है जद बात आवे तन खाशू तो तेल लूण मशा बापरे। मैं पंडूतर देव तो जावण दियो सरदार जी बतावे आ ऊपर करतार हेठे पटवार। थाने तनखारी काई लोड है, लोग जोड़ा में रिपिया गालियां लारे फिरे वो सरदार जी ने सागे रड़ाऊ तो मरणो है कोई। आजकल रिपिया शू रंग उतरता जेज नहीं लागे, आपा तो सुखी पगार शू ही काम चलावा दोरो सोरो। मैं कहूँ तो पण बो सरदार जी मुनीम जी और मास्टर जी बात ने खींचर मुलकरी ताती बैस में बदल नाखता। इन रोड़े बिचाड़े मारी कुण सुनतो सो मैं मून धारणो ही ठीक समझतो। मैं कदी आपरो जन्मदिन कोनी मनायो नी ब्यारी बरस गांठ, सांची कहूँ तो जिया जूनरी बाजा नाशी में ऐसे चेते ही को रेवेनी। जमाबंदी नक्शे में ही बीतगी आदि शू बैसी। कई बार भूलण री इण बाण शू मारे निजू जीवन में घमसाण ही मंड चुक्या है, पण लारले 4 वर्षा शू लगो लग मारो जन्मदिन मनाई जे बोई रेलगाड़ी में। एपी मारे सारू जन्मदिन रो गिफ्ट तो लावे ही लावे, ठंडे और नमकीन शू पार्टी बड़े करे। आ फगत मारी बात कोनी, वो सागे जात्रा करनिया सगड़ा लोगा रे हरख पीड़ में शामिल हुए, पर पीड़ बाजणो सुभाव ही है उनरो। मुनीम जी री बेटी री डिलीवरी बिगड़ी तो बाजर अस्पताल पूग्यो और खून ही दियो। सरदार जी रे भतीजी रे ब्याह में बन 2 दिन री छुट्टी लेर सारो लगायो। इतो ही नहीं सागिरद्या मैं किणी ने टाबर रो रिजल्ट देखणो हुए, का कोई ऑनलाइन फॉर्म भरनो हुए, रेलवे री ई टिकट बनावनी हुए, का कंप्यूटर मोबाइल सुधारनो हुए, आँख संगली समस्यावां रो एक समाधान हो हैप्पी। उनने केवन रो मतलब आप नचिंता हो गया। सांचाणी नित 1.25 घंटे री यात्रा में कित्ता रिश्ता कमाया आ बण, पण एक रिश्तो जको मैं पत्ता कूटता थका मांडाणी थरप्यो आज मारे पगा में जेवड़ी बणर मने उलझा राख्यो है। बा रोज मंडी शू गाड़ी चढ़ती और शहर जावती, रंग रूपरी फूटरी और उम्र में हैप्पी रे ओले दौड़े। शायद बा किणी थोड़ नौकरी करती हुएला, क्योंकि अधितवार का बीजे छुट्टी वाले दिन बा कोनी दिसती। मैं उनरो नाम कोनी जानू, शायद वो ही नहीं जानतो वेला, पण मैं और मुनीम जी मतो मते ही बारी जोड़ी बना दी। यार हैप्पी आ तो थने दीदा फाड़ देखती रवे।
का आ थारा सारू

0: अभी आपने सुना देशभक्ति गान। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सौरभ। सुबह के 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विकास यात्रा। कार्यक्रम की आलेख और प्रस्तुति होगी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजन किया है श्री अमित सिंह ने।
1: आजादी का अमृत महोत्सव।

0: आजादी के अमृत महोत्सव में प्रस्तुत है भारत के हर क्षेत्र में बढ़ते कदमों पर आधारित विशेष कार्यक्रम विकास यात्रा। केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित हमारा कार्यक्रम विकास यात्रा, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का विशेष कार्यक्रम विकास यात्रा में। विकास यात्रा में हम बात करते हैं केंद्र सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना की जो प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की मार और कीट बीमारियों के संकट में आपके खेतों को सुरक्षा देती है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की।

0: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
1: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: ये योजना आपकी मेहनत की फसल को नुकसान से बचाने के लिए सरकार की ओर से दी गई एक बड़ी सौगात है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। हम सब जानते हैं कि खेती करना सिर्फ जमीन जोतना और बीज बोना नहीं है, यह प्रकृति के साथ एक संघर्ष भी है। कई बार सूखा, अधिक वर्षा, बर्फबारी, ओलावृष्टि, कीट और बीमारियां मेहनत की कमाई को मिट्टी में मिला देती हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है किसानों को इन सभी जोखिमों से आर्थिक

0: सुरक्षा देना। यह योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी और इसका संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आइए जानते हैं इस योजना के मुख्य पहलुओं को जो इसे खास बनाते हैं। इसमें पहला है इसका न्यूनतम प्रीमियम। खरीफ फसलों पर केवल 2% प्रीमियम रहता है और रबी फसलों पर 1.5%, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों पर 5%, बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार साझा रूप से देती है। इस योजना में आपको समावेशी कवरेज मिलती है। प्राकृतिक आपदा, सूखा, ओलावृष्टि, अधिक बारिश, कीट या रोग के कारण फसल हानि होने पर आपको कवरेज दी जाती है। फसल कटाई के बाद यदि बारिश से नुकसान हो जाता है तो भी आपको कवरेज मिलती है। और स्थानीय आपदा से अगर नुकसान होता है, जैसे कि आग लगना या बिजली गिरना, तो भी आपको इस योजना में कवरेज दिया जाता है। यह योजना सभी किसानों के लिए खुली है, चाहे आपने कृषि ऋण लिया हो या नहीं, आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। ऋणी किसान के लिए यह योजना स्वतः लागू होती है। डिजिटल क्लेम प्रोसेसिंग भी इसमें उपलब्ध है और आप मोबाइल ऐप, सैटेलाइट, ड्रोन और जीपीएस से आंकड़े लेकर नुकसान का आकलन कर सकते हैं। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज बनती है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा के कुछ क्षेत्रीय लाभार्थियों से कि उन्हें कैसे इस योजना का फायदा मिला। इन लाभार्थियों से बात करी हमारे साथी महेश उपाध्याय ने।
1: जी सर, आपका शुभ नाम?
2: मेरा नाम धर्मराम सारण है।
1: जी धर्मराम जी, आपका गांव कौन सा है?
2: गांव मेरा बीकानेर जिले के नौका तहसील में है, भामरसर गांव।
1: भामरसर गांव के आप हैं। तो अभी हम ये बात करना चाहते हैं कि पीएम फसल बीमा योजना जो संचालित है सरकार की तरफ से, उसकी उसका आपने लाभ उठाया है, आप लाभार्थी हैं, तो आप बताएं कि इसकी सबसे पहले आपको जानकारी कैसे मिली?
2: इसकी जानकारी तो मुझे कोई इस सोशल मीडिया से मिली थी।
1: अच्छा।
2: और कुछ समय मैंने सोचा ऐसे ही है क्या, इसमें ऐसे पैसे लगाने हैं। फिर मैंने इसको ई मित्र से ये फसल बीमा करवाई थी।
1: जी।
2: मूंगफली की थी, वो कपास भी था, मूंग, ग्वार, बाजरा।
1: अच्छा, तो आपका जो खेत है वो भामरसर में है या आगे पीछे कहीं और है?
2: भामरसर में है।
1: भामरसर में है। अच्छा, फसल की जो बीमा आपने करवाई उसके लिए ई मित्र से आपने अप्लाई कर दिया है ना?
2: हाँ
1: जी। उसके बाद क्या फाइल वो आपकी बैंक में जाती है?
2: वो बात पता नहीं है कहाँ से जाती, लेकिन ऑनलाइन वहीं से ही होता है।
1: जी ठीक है, ऑनलाइन हो गया।
2: पहले लोगों को बैंक जाना पड़ता था, इधर उधर जाना पड़ता था, लेकिन इस योजना से ये सीधे ई मित्र से अपन करवा सकते हैं।
1: जी बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद में फसल में क्या ऐसा कोई नुकसान हुआ जिसकी आपको फिर बीमा थी, तो जो आपको जो है मुआवजा किस तरह से मिला, कितना मिला?
2: उस साल ही कर रहा था, उस साल ही वो एक बार तो पहले खराब हो गई थी, तब कोई बीमा था नहीं।
1: अच्छा अच्छा।
2: लेकिन उस वो जो पिछली बार जब वो आई थी ना, वो एक बार बारिश ज्यादा आ गई थी, फसल जब एकदम पका हुआ थी उस समय।
1: अच्छा, फिर वो फसल खराब हो गई आपके, है ना?
2: फसल बुरी तरह खराब हो गई।
1: तो फिर उसका जो मुआवजा मिलता है वो आप ये कैसे तय करते हो, या कोई और देखता है कि फसल का कितना नुकसान हुआ, ये अमाउंट कौन तय करता है?
2: वो हमारे देखने से क्या, वो अधिकार देखते हैं, उनको पता है।
1: अच्छा,
2: हम तो बोल देंगे इतने का है, उससे क्या होगा।
1: तो उन्होंने
2: पहले हमारे करवाया हुआ नहीं था, फसल खराब हो गई थी, उसका क्या मिला था? कुछ नहीं मिला था।
1: अच्छा,
2: क्योंकि बीमा ही नहीं थी।
1: लेकिन जब बाद में आपने करवा लिया तो उसका आपको फायदा मिला?
2: उसका मिला। उसके बाद अभी तक तो हमारे बीमा तो हम हर बार ही करवाते, लेकिन अभी तक कोई खराबा नहीं हुआ है।
1: क्या कहना चाहते हो आप, क्या कहना चाहते हो भारत सरकार को या प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने एक ऐसी योजना शुरू की?
2: मैं तो यही कहना चाहता हूँ, योजना अच्छी है, सबको करवाना चाहिए, भगवान करे किसी के कुछ खराब हो नहीं हो, लेकिन हो जाए उसका फिर जिम्मेवार कौन है, इससे अच्छा प्रधानमंत्री जी कुछ दे तो रहे।
1: जी जी बिल्कुल। लक्ष्मण राम जी, आपने क्या पीएम फसल बीमा योजना का आवेदन किया था?
3: बिल्कुल किया था।
1: अच्छा अच्छा, तो आपने किस तरह से आवेदन किया, आपको सबसे पहले जो है पता कैसे लगा कि ये फसल बीमा कोई योजना है?
3: सर इसमें पहले बैंक में मेरे केसीसी की हुई थी, केसीसी के आधार पर 6 महीनों से रोल आउट करते हैं, उस टाइम हम फसल बीमा कटवाते हैं।
1: जी।
3: अलग अलग दिन स्वायर कटवाते हैं, कौन सी दिन स्वायर हमारे खेत में बिजी हुई है वो अलग अलग कटवा के दिन स्वायर का पेमेंट कटवा देते हैं उस टाइम।
1: अच्छा।
3: उसके बाद में सर

0: फसल खराब होता है ना,
1: हम्म,
0: उसमें कंप्लेन करते हैं, वो दे के जाते हैं और दे के क्लेम मिल जाते हैं
1: अच्छा,
0: 75,000।
1: हम्म, आपको सबसे पहले पता कैसे लगा कि ऐसी कोई योजना है? आपको किसने बताया?
0: बैंक में ही बताया सर।
1: बैंक में? अच्छा, कौन सी बैंक थी?
0: SBI
1: SBI बैंक से आपको पता लगा। और आपका गांव?
0: मान्याना।
1: मान्याणा, यानी नोखा तहसील में है।
0: हाँ, नौका तहसील में सर।
1: अच्छा, तो उसके बाद में जैसे आपने अलग अलग जीरा या जो भी आप खेत में लगाते हो, उसकी अलग अलग बीमा हुई या एक साथ एक बीमा हो गई?
0: नहीं, अलग अलग जिन शायद भरा था, इतना हेक्टर मैंने जीरा बीजा है, इतना हेक्टर ग्रीसूलो जाए, इतना हेक्टर सरसों बीजा है, इतना हेक्टर कणक बीजा है।
1: अच्छा, तो फिर बैंक में आपने जब आवेदन किया, जैसा आप बता रहे हो कि जो है KCC आपकी हुई भी है पहले से,
0: हाँ जी,
1: तो उसके अलावा बीमा के लिए क्या चीज़ आपसे मांगी गई? कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ?
0: आधार कार्ड मांगा था मेरे से।
1: बीमा का काम आपका कितनी देर में हो गया, कितने दिनों में हो गया? आपको बैंक ने कब कहा कि भाई अब आपका बीमा हो गया फसल का?
0: वो तारीख होती है उसमें फिक्स, कभी तो 30 तारीख होती है, कभी 15 तारीख होती है। उसमें पहले पहले हमने जिन साइड भर के उसको दे देते हैं फार्म।
1: जी,
0: हाँ, वो फार्म देते हैं ना, वो अलग अलग जिन साइड काट करके वो सेट कर देते हैं।
1: अच्छा, आपकी जब फसल बीमा हो गई और फिर आपने वो फसल बोई है ना,
0: हाँ जी,
1: और फसल बोने के बाद में क्या ऐसा कोई नुकसान हुआ? अगर हुआ तो वो किस चीज़ से हुआ आपका?
0: कभी बरसात से हो गया सर, कभी और किसी से हो गया, कभी
1: या कोई रोग लग गया होगा?
0: रोग लग गया होगा।
1: हम्म, तो बारिश से या जो है कीड़ों से या किसी और चीज़ से नुकसान हुआ, तब आपको आपने बैंक वालों को बताया या ये कहाँ बताया कि भाई मेरा इतना नुकसान हुआ?
0: नहीं, वो तो टोल फ्री नंबर है ना, उस पे दिया था सर।
1: टोल फ्री नंबर पे आपने बात कर ली,
0: हाँ,
1: ठीक है। तो उसके बाद आपकी कितनी जो बीमा की राशि थी या आपको कितना लाभ मिला इस योजना के अंतर्गत?
0: लाभ तो सर अलग अलग जिन शहर में, अभी पूरी रिपोर्ट नहीं है, बाकी लाभ टोटल सब में मिला। मेरी खराब हुई थी ना,
1: हम्म,
0: उसमें टोटल जिन शहर में मेरे को लाभ मिला था।
1: कितना अमाउंट कुछ बता सकते हैं? एक लगभग कि मेरी इतनी इतना फसल का नुकसान हुआ और इतना मुझे भरपाई मिल गया।
0: नुकसान तो पहले मेरे को लमसम 20,000 रुपये बीमा का कटा था मेरे,
1: जी,
0: बाद में कभी अलग अलग दिन से आए, कभी 21,800 आए थे, कभी 5,000 आए थे, अलग अलग ऐसे आए थे। हाँ
1: हम्म, कुल मिलाकर आपको जो नुकसान हुआ उसकी सारी भरपाई हो गई?
0: जी,
1: अच्छा, तो आप जो है भारत सरकार को या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या कहना चाहोगे?
0: मैं नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ सर,
1: जी,
0: किसानों के लिए ये सुविधा है उसने
1: हम्म,
0: चालू की है।
1: चलिए, बहुत बढ़िया है ना कि आपको अभी रेडियो में बहुत लोग सुन रहे हैं, तो किसान जो सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे फसल बीमा के बारे में?
0: किसान को यही जागरूक कर रहे हैं कि आगे आगे आप बीमा कटवाओ, बीमा कटवा के फसल की पूरी ध्यान रखो, सरकार अपने को योजना दे रही है, उसका पूरा लाभ उठाओ।
2: अभी आपने जाना इस योजना के लाभार्थियों से उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। निकटतम बैंक शाखा, CSE सेंटर या कृषि कार्यालय जाएं। बीमा कराने की अंतिम तिथि संबंधित सीजन के अनुसार होती है, इसकी जानकारी अपने क्षेत्रीय कृषि अधिकारी से प्राप्त करें। दस्तावेजों में जमीन का कागज, पहचान पत्र जैसे कि आधार, पासबुक और फसल विवरण जरूर लेकर जाएं। आप ऑनलाइन पोर्टल pmfby.gov.in या मोबाइल ऐप से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद आपको एक बीमा पॉलिसी नंबर दिया जाएगा जिसे आप संभाल कर अवश्य रखें। आइए अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है।
3: आजाद हिंदुस्तान में ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए कभी नहीं आई। मैं बताता हूं कैसे। किसान को ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुई है। क्या किया है हमने? मान लीजिए आप जून महीने में बुआई करना चाहते हैं लेकिन बारिश नहीं आई, सब खर्चा कर दिया, सब व्यवस्था कर दी, बस बारिश आ जाए बुआई के लिए तैयार बैठे हैं आप। जुलाई में बारिश नहीं आई, अगस्त में बारिश नहीं आई, बुआई हो नहीं पाई। अब मुझे बताइए किसान क्या करेगा? बुआई नहीं हुई तो क्या करेगा? पहली बार हम एक ऐसा बीमा योजना लाए हैं कि अगर किसान बुआई नहीं कर पाया तो भी उसको बीमा का पैसा मिलेगा, उसके साल को बचा लिया जाएगा। 100% 16 आनी 5 पैदा हो गया, बस खेत में फसल का ढेर करके रखा हुआ है,

0: अब एक दो दिन चार दिन में मंडी जाना है, ट्रैक्टर आने वाला है, बैलगाड़ी आने वाली है, सब तैयार है, मंडी जाने के बाद इंतजार है। और अचानक ओले गिर गए, अचानक बारिश आ गई, अचानक आंधी आ गई, सोलानी फसल बर्बाद हो गई। भाइयों बहनों, इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम ऐसी लाए हैं कि कटाई के बाद 15 दिन में अगर खेत में आपकी फसल पड़ी है, ढेर लगा हुआ है, मंडी में जाने का इंतजार है और उसी समय अगर नुकसान हो गया तो भी फसल बीमा का पैसा मिलेगा, ये काम हमने किया है।
1: तो श्रोताओं, अब खेती को जोखिम का काम मानने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ आप सुरक्षित हैं, आपके खेत और आपकी मेहनत सुरक्षित है। तो अगली फसल से पहले बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदा से ना घबराएं, क्योंकि अब सरकार है आपकी ढाल। फिर मिलेंगे एक नई योजना के साथ, तब तक के लिए बरखा थानवी व्यास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: ये था हमारा विकास यात्रा का आज का अंक। आलेख और प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, संयोजन था श्री अमित सिंह का।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम विकास यात्रा, विषय था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आलेख और प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और इस कार्यक्रम का संयोजन किया था श्री अमित सिंह ने। सुबह के 9 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी के लिए आज प्रचंड गर्मी और लू का रेड अलर्ट। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अधिकतम तापमान 48 डिग्री के पार। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के बारे में सीबीआई ने मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया, अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की। और कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मी निलंबित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का असर है। प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़ों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और अधिकतम तापमान कल 48 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं फलौदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में दिन का पारा 45 डिग्री के पार रहा। प्रदेश में दिन के तापमान में 6 डिग्री और रात के पारे में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और जालौर में रात का पारा 30 डिग्री के पार रहा। राजधानी जयपुर में भी गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है। दिन के पारे में 3 डिग्री और रात के तापमान में करीब 1 डिग्री का उछाल रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में पारे में और बढ़ोतरी के आसार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हीट वेव के साथ साथ रातें भी काफी गर्म रहने की संभावना है।
5: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर रात का पारा भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन गर्मी के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
4: राज्य में कल कहीं कहीं हल्की बरसात भी हुई। अलवर के कोटकासिम में 1.5 सेंटीमीटर पानी बरसा। भरतपुर जिले में आंधी के साथ जोरदार बरसात हुई। वहीं कई

0: गांवों में ओले भी गिरे। आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में धूल भरी हवाएं चलने के आसार हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के संबंध में सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। इसमें देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के बारे में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। देश में नासिक सहित अन्य स्थानों से भी पेपर लीक करने में शामिल साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच सीबीआई टीम जांच के लिए कल जयपुर पहुंची। इन्होंने राजस्थान एसओजी की ओर से हिरासत में लिए गए करीब 20 लोगों से पूछताछ की। इससे पहले सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार को भी देहरादून से पकड़ा गया था। एसओजी के आईजी अजयपाल लांबा ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए एसओजी सीबीआई का पूरा सहयोग कर रही है।
1: सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया है। सीबीआई की टीम एसओजी से संपर्क में है। उनकी टीम के जो भी सदस्य हैं, उनको अब तक की पुलिस ने जो पूछताछ करी है उस पूछताछ से उनको अवगत करा दिया गया है और पूछताछ से जो चीजें सामने आई उसमें कई लोगों से पूछताछ के पश्चात कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो इस परीक्षा पेपर के गिरोह के रूप में शामिल होने की संभावना है। उन तमाम संदिग्ध व्यक्ति जो है उन व्यक्तियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ शुरू करी है। पूछताछ के पश्चात इन व्यक्तियों का जो जो इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा उस पर आगे की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा ही की जाएगी।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: नीट परीक्षा कथित पेपर लीक के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस की ओर से जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोटा स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नवा दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना भी समारोह में मौजूद रहेंगे। विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉ. विमला डोकवाल ने बताया कि इस साल कृषि, उद्यानिकी और वानिकी संकायों के कुल 358 अभ्यर्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इनमें स्नातक के 318, स्नातकोत्तर के 34 और पीएचडी के 6 शोधार्थी शामिल हैं। विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले 11 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया है। उन्होंने अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या भी कम करने का निर्णय किया है। साथ ही मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी कम वाहनों के इस्तेमाल में किफायत बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेट्रोल डीजल की गैर जरूरी खपत कम करने की बात कही है। सभी विभागों को सरकारी कार्यक्रमों, दौरों और वीआईपी मूवमेंट तथा प्रोटोकॉल के नाम पर अतिरिक्त गाड़ियों की संस्कृति खत्म करने को कहा गया है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल बचत की देशव्यापी अपील की थी। ज्ञान भारतम मिशन के तहत राजस्थान में अब तक 16.5 लाख से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है, जो देश में सबसे ज्यादा है। कल जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि कला संस्कृति विभाग और राज्य के विशेषज्ञों की सहभागिता से पांडुलिपि सर्वेक्षण का काम व्यापक स्तर पर किया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न पुराणों, वेदों और अन्य ग्रंथों से संबंधित महत्वपूर्ण पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण किया गया। उन्होंने बताया

0: की इन दस्तावेज की श्रेणीबद्ध सूची तैयार की जा रही है। कोटा की न्यू मेडिकल अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में चिकित्सा विभाग ने लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्यकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें कॉलेज के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग के आचार्य डॉ. बद्रीलाल और सह आचार्य डॉ. खुशबू मीणा शामिल है। वहीं कॉलेज की नर्सिंग अधिकारी मीनाक्षी मीणा और जेके लोन अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी पिंकी खींची को भी निलंबित किया गया है। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा और न्यू मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण अभियान में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जैसलमेर के ब्रीडिंग सेंटर में 2 और नन्ही गोडावण का आगमन हुआ है। इसके साथ ही कृत्रिम प्रजनन केंद्रों में गोडावणों का कुल आंकड़ा 86 पर पहुंच गया है। 10 मई को रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में और 11 मई को सम सेंटर में AI तकनीक के माध्यम से 2 चूजों ने जन्म लिया। अब तक इस तकनीक की मदद से 26 गोडावण जन्म ले चुके हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की कुल 1320 मेगावाट क्षमता की 2 सुपर क्रिटिकल इकाइयों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये बेहतरीन प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अंतिम तिमाही में किया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि दोनों सुपर क्रिटिकल इकाइयों से 95% से अधिक बिजली उत्पादन उपलब्धता हासिल हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी के लिए आज प्रचंड गर्मी और लू का रेड अलर्ट। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अधिकतम तापमान 48 डिग्री के पार। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के बारे में CBI ने मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया, अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की। और कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्यकर्मी निलंबित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 9:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए लोक संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
3: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
3: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
3: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
3: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी
3: ये वो अवधि है

0: है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
1: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
0: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता

0: इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती हैं और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है।
0: जी
1: वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
0: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी,
0: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
0: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
0: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी
0: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
0: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं, जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
0: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80 से 90% तक पानी होता है।
1: जी
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए,
0: जी
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है,
5: तेरी तुम्हारी बारी, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ पे
4: चलो,
5: पानी
4: चलो,
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुईं। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना।

0: पी लिया पानी? प्यास बुझी?
1: हाँ
2: हाँ,
1: अम्मा।
2: पर ठंडा पानी था।
1: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
0: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ? नहीं समझे? अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: जलते हैं।
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा
1: ऐसा मौसम।
0: मौसम। ओ, आप
1: ओ, आप
0: गर्मी
1: गर्मी
0: अम्मा
1: अम्मा
0: हैं।
2: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं? पता ही नहीं चलता।
2: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू, यानी यानी शुरू हो जाती है। हाँ
0: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
2: भाई, मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ,
0: चलो
1: चलो अम्मा,
0: आओ।
1: चलते हैं।
0: चलो।
3: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
2: मैं देखती हूं, तुम लोग यहीं बैठो।
3: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा, आप क्या छुपा रही हैं?
2: मेरे ही मौसम का एक फल है।
0: दिखाओ ना
2: दिखाओ
0: अम्मा,
2: ना।
0: दे
2: दूंगी
0: दो।
2: तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
2: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
0: पसंद है।
1: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल
2: नहीं समझी?
1: है? नहीं।
2: अच्छा, तो फिर सुनो।

0: बड़ी समझदार हो।
1: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम कुल्फी।
0: बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो,
2: तो बड़ी अच्छी
0: बर्फ के गोले
2: लगती
0: खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है
2: अरे कोई खाने
0: ना।
2: को दे तब ना।
0: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
3: लाओ अम्मा,
2: लाओ अम्मा।
0: लो।
2: गर्मी अम्मा,
0: हाँ?
2: आप बहुत अच्छी
0: हाँ, तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
2: हाँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो है। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी

0: उसी कोने में है।
1: हाँ।
0: है ना?
2: ठीक कहते हो तुम, अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
0: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
2: जरा उधर देखो।
0: अब किधर?
2: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
0: हाँ? कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
2: हाँ।
0: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
2: हाँ? हाँ? पहनावे से तो कोई कबाइली लगता है।
0: हाँ।
2: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
0: हाँ।
2: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
0: हाँ, आने दो, आने दो। ए, कौन हो तुम? रुको, रुको। जाओ वहीं रुक जाओ, रुको।
3: कौन हो तुम?
4: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
3: क्या सूचना?
4: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
3: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
4: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
5: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
4: सर हम एक चरवाया हैं।
5: आगे बताओ।
4: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
5: क्या देखा तुमने?
4: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
5: क्या?
4: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
5: कितने लोग रहे होंगे?
4: साहब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
5: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
4: साहब मेरा गाँव है घरकोन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
6: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
7: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
6: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
7: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
6: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
7: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत

0: भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
1: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
0: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
3: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
5: जी, यस सर।
2: ये मेज के चारों ओर।
5: जी सर।
3: उधर से।
2: जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
5: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
5: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
5: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
3: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
6: यस सर।
2: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
5: जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
5: सर।
2: कोई शक?
5: नो सर।
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
6: यस सर।
3: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
7: धीमे बोलो, धीमे।
3: जी,
7: उन्हें पता ना चल जाए।
3: जी सर।
7: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
3: जी।
7: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
3: ठीक है सर।
7: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
3: जी सर।
7: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
3: जी सर।
7: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। धीरे, बहुत धीरे,
3: धीरे।
7: तबे बहुत। बस, अब हम चोटी पर आ गए हैं, तो अब रेंगना शुरू करो।
3: रेंगेंगे। जी सर।
7: कोई भी उठ कर नहीं जाएगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
3: हाँ सर।
7: Everybody ready?
5: Yes sir.
3: Yes sir.
7: अब हथगोला फेंको।
2: Good. वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर

0: भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए चिन्मय श्रीपदा और अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म टू स्टेट से गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म राब्ते जैसे गीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
2: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
1: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
2: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

अभी आपने सुना अरमान मलिक की आवाज़ में वाई चीट इंडिया फिल्म से गीत। इस गीत को लिखा था मनोज मत्सर ने

0: सुनेंगे कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म भोला से। गीत को गाया है बी प्राक और इरशाद कामिल ने, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान,
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म धुनकी से आवाजें हैं अरिजीत सिंह की।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। 11:05 हुए हैं और आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म यकीन से आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी की, लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म एक सपेरा एक लुटेरे से गीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ पलों में आप समाचार सुन

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल का वित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए

0: ने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाली यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट UG परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत SOG ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। IPL क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

दिन में 1:05 पर महिलाएं कार्यक्रम सुनेंगी महिला जगत। चर्चा के विषय रहेंगे तनाव प्रबंधन के सरल उपाय, कामकाजी महिलाओं के लिए संतुलित आहार, घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानूनी जागरूकता, घर को स्वच्छ रखने के तरीके, साथ ही स्वयं सहायता समूह योजना पर आधारित विशेष कार्यक्रम कदम बढ़ाए चलो का 20वां एपिसोड प्रसारित होगा। आप सुनेंगे भेंट वार्ता स्वयं सहायता समूह से।

संध्या 5:05 पर युवा साथियों के लिए युवाणी का प्रसारण होगा। आज की बात का विषय रहेगा पुस्तकें हैं सच्चे मित्र। लघु जानकारी सुनिए फकरुद्दीन अली अहमद जयंती के बारे में, आर के नारायण पुण्यतिथि के बारे में, विटामिन ए और ज्वालामुखी के बारे में, रोजगार समाचार और साथ ही गीत संगीत। छह 6:40 पर जिले की चिट्ठी जयपुर केंद्र से रिले होगी।

संध्या 7 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण होगा। चर्चा के विषय रहेंगे बीज उपचार का महत्व, कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई उपरांत देखभाल, जल ही बचत, जल ही उत्पादन, साथ ही लोकगीत, मौसम संबंधी जानकारी और न्यूनतम बाजार मूल्य। रात 8:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत, 9:15 पर सुनिए फिल्म संगीत और 9:30 पर चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 10:30 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत, कलाकार होंगे सौकत हुसैन खान।

ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। एफएम पर आप हमें सुन रहे हैं 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं वीरेंद्र शर्मा।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे वीरेंद्र शर्मा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

महेंद्र कपूर के स्वर में हमराज फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, स्वर महेंद्र कपूर का ही है और फिल्म का नाम है गुमराह।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन का एक बजा है, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से मुलाकात कर राज्य की जल परियोजनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री श्री पाटिल के निवास पर हुई इस भेंट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस दौरान यमुना जल समझौते सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में इस परियोजना पर तेजी से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती से योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। इधर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया है। उन्होंने अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या भी कम करने का निर्णय किया है।

0: मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी वाहनों के इस्तेमाल में किफायत बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सीबीआई टीम ने जयपुर में राजस्थान पुलिस के एसओजी की ओर से नीट पेपर लीक मामले में हिरासत में लिए गए 20 से अधिक लोगों से पूछताछ की। एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में भी सैकड़ों लोगों से पूछताछ की है। एसओजी के अनुसार कई लोगों ने कथित तौर पर पैसे लेकर गैस पेपर बेचे, जिनमें से कई प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए थे। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके बाद एसओजी ने आरपीएससी के ही एक लिपिक मानसिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसे करौली जिले की नादोती तहसील से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने जयपुर के दो केंद्रों पर हुई परीक्षा डमी अभ्यर्थी से दिलवाई थी। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के लिए ये चेतावनी बताते हुए विभाग ने लोगों से दोपहर के समय घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इस बीच बाड़मेर कल लगातार 3rd दिन भी देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ दिन का तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। फलौदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कोटा और झुंझुनू में भी झुलसाने वाली गर्मी का असर है। राजधानी जयपुर में कल अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री मापा गया। दिन भर धूप की तपिश और लू के कारण सड़कें और बाजार सूने नजर आए। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें योगाभ्यास करवाया जा रहा है। साथ ही योग के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में पाली जिले के कोलीबाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में छात्र छात्राओं को योगासन करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। ये आज से प्रभावी हो गया है। सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। प्लेटिनम पर आयात शुल्क भी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। इसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति इस साल 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहनें अपना कार्यक्रम सुनेंगी महिला जगत।

महिला जगत सुनने वाली सभी बहनों का स्वागत है और आपके साथ है आपकी रेडियो सखी मीनाक्षी स्वर्णकार। तो कीजिए स्वीकार मेरा स्नेह भरा नमस्कार। बहनों, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि एक दिन सिर्फ 24 घंटे का ही क्यों होता है, थोड़ा और समय होना चाहिए था। लेकिन आपको पता है इन 24 घंटों में 1440 मिनट होते हैं और अगर सेकंड्स में देखें तो 86,400 सेकंड्स। यानी समय तो कम नहीं है हमारे पास, हमारा हर एक सेकंड बहुत कीमती है क्योंकि हर सेकंड के साथ हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ रही होती है। कुछ सेकंड हम मुस्कुराने में बिताते हैं, कुछ सेकंड सोचने में, कुछ सेकंड रिश्तों को निभाने में और कुछ सेकंड हम बस यूं ही खो देते हैं। लेकिन सच यही है इन 86,400 सेकंड में से हर एक सेकंड महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पर एक महिला के जीवन में, क्योंकि वही घर संभालती है, वही रिश्तों को जोड़ती है, वही सपनों को भी जीती है और जिम्मेदारियों को भी। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन छोटी छोटी बातों की जो इन कीमती सेकंड्स को और भी खूबसूरत बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिल से दिल की बातचीत सिर्फ आपके लिए इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: मैंने कभी कभी जिंदगी बहुत शोर करती है, लेकिन उस शोर के बीच एक खामोशी भी होती है जो सिर्फ हम महसूस करते हैं। दिन भर की भाग दौड़, जिम्मेदारियों का बोझ, सबको संभालने की कोशिश, और फिर रात को जब सब सो जाते हैं तो मन चुपचाप हमसे एक सवाल करता है, क्या तुम ठीक हो? बहनों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो जरा ठहरिए और इस सवाल का जवाब खुद को दीजिए कि आप सच में ठीक हैं या बस सबको दिखाने की कोशिश कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं तनाव प्रबंधन की, लेकिन सिर्फ उपायों की नहीं, बल्कि उस दर्द की, उस थकान की, जिसे हम अक्सर छुपा कर जीते हैं। हम महिलाएं बड़ी अजीब होती है, सबका ख्याल रखते रखते खुद को भूल जाती हैं। हमें याद रहता है कि बच्चों को क्या पसंद है, परिवार को क्या चाहिए, घर में क्या कमी है, लेकिन कब हमने खुद से पूछा मुझे क्या चाहिए? शायद बहुत समय हो गया या फिर पूछा ही ना हो। मेरी एक सहेली है जो हर दिन सुबह से रात तक काम में लगी रहती थी। उसके पास हर किसी के लिए समय था, लेकिन अपने लिए नहीं। एक दिन उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, आपको आराम की जरूरत है। तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपने शरीर और मन की आवाज़ को कितने समय से अनसुना कर रखा था। और मेरी ये सहेली आप में से कोई भी हो सकती है जिसने खुद को कब से अनसुना कर रखा है। बहनों, हम मजबूत हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दर्द नहीं होता। हम सब कुछ संभाल सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सहते ही रहना चाहिए। तनाव को कम करने के लिए सबसे पहला कदम है खुद को स्वीकार करना, खुद से कहना, हाँ मैं थक गई हूँ और मुझे थोड़ा रुकने की जरूरत है। यह मान लेना ही आधी राहत दे देता है। दूसरा कदम, खुद को समय देना। दिन में कुछ पल ऐसे जरूर निकालिए जहाँ कोई शोर ना हो, बस आप हों और आपकी सांसें हों। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए और महसूस कीजिए कि आपका मन हल्का हो रहा है। तीसरा, अपनी भावनाओं को दबाइए मत। अगर मन रोना चाहता है तो रो लीजिए, अगर बात करना चाहते हैं तो किसी अपने से कह दीजिए, क्योंकि चुप रहकर सब सहना ताकत नहीं बल्कि खुद को चोट पहुंचाना है। और हाँ, कभी कभी यूं ही अपनी सहेलियों के साथ बैठकर हंसी मजाक या हल्की फुल्की गॉसिप कर लेना भी मन को बहुत सुकून देता है। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन दिल हल्का हो जाता है और चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। और सबसे जरूरी, खुद से प्यार कीजिए। हम अक्सर दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं करते। बहनों, आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप मजबूत हैं, लेकिन आपको भी सहारे की जरूरत होती है। आप अपना ख्याल रखती हैं, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, ये एक एहसास है जिसे जीना भी उतना ही जरूरी है। और हाँ, कभी कभी अपने साथ भी डेट पर जाइए।

पसंद का खाना खाइए, कहीं घूमने जाइए, बाजार में बिना किसी जल्दी के टहलिए, या बस किसी शांत जगह बैठकर खुद के साथ समय बिताइए। यकीन मानिए, यह छोटी सी आदत आपके मन को बहुत बड़ा सुकून देगी। तो आइए आज से हम खुद से एक वादा करें कि हम अपनी थकान को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, अपने मन की आवाज़ सुनेंगे और खुद को भी उतनी ही अहमियत देंगे जितनी हम दूसरों को देते हैं। क्योंकि जब आप अंदर से ठीक होंगी तभी बाहर की दुनिया भी आपको सुंदर लगेगी। तो बहनों, जब मन पर जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा ज़्यादा हो जाए और विचारों की उलझने हमें थका दे, तब जरूरी है कि हम खुद को एक छोटा सा विराम दे, क्योंकि हर समस्या का हल उसी वक्त नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा ठहरना हमें उसे समझने की ताकत जरूर दे जाता है। तो आइए इसी छोटे से सुकून के पल को महसूस करते हैं और सुनते हैं एक ऐसा गीत जो जिंदगी को थोड़ा हल्का, थोड़ा आसान बनाने का एहसास देता है।

और बहनों, अब कार्यक्रम में सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम, कदम बढ़ाए चलो, स्वयं सहायता समूह योजना पर आधारित है। और इसकी वार्ताकार है स्वयं सहायता समूह से बनी पोषण सखी सीमा कुलरिया जी, भेंट करता है मधु शर्मा, प्रस्तुति है श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, संयोजन है श्री अमित सिंह का।

0: कदम बढ़ाए चलो कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को हमारा नमस्कार। बहनों, स्वयं सहायता समूह योजना पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहनों, हमारे स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्व आवश्यक है, यानी हमारे भोजन में पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का होना बहुत ज़रूरी है। और इस बात का ध्यान हमसे ज़्यादा और कौन रख सकता है ना, क्योंकि हम तो गृहिणियाँ हैं और हम पूरे परिवार सहित स्वयं के स्वास्थ्य की देखभाल रखते हुए अपने दायित्वों को पूरा करते हैं। बहनों, आज के इस अंग में भी हम कुछ ऐसी ही चर्चा करने के लिए, अरे रुकिए, आज के मेहमान के बारे में हम नहीं बताएंगे, थोड़ी देर यानी कि थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले सुनिए आज का सवाल, जिसका सही जवाब हम देंगे इस अंक के अंत में। तो बहनों, ध्यान से सुनिए आज का सवाल। पोषण सखी की पहली योग्यता क्या है और कम से कम समूह की कितनी बैठकों में उपस्थिति होनी चाहिए? बहनों, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए कि पोषण सखी की मुख्य योग्यता क्या होनी चाहिए और कम से कम समूह की कितनी बैठकों में उपस्थिति होनी चाहिए। तो बहनों, ये था आज का सवाल, जिसका सही जवाब आपको मिलेगा इस कार्यक्रम के अंत में। वैसे हम आपको बता दें कि इस सवाल का सही जवाब इसी कार्यक्रम में होगा, बस आपको ध्यान से सुनना है हमारे इस कार्यक्रम को कदम बढ़ाए चलो। तो बहनों, बढ़ाते हैं अगला कदम। आज हमने इस अंक में आमंत्रित किया है पोषण सखी श्रीमती सीमा कुलरिया जी को, और आपसे हम चर्चा करेंगे कि पोषण सखी क्या है, इसके कार्य क्या हैं, ये सखी कैसे कार्य करती है, यानी कि इन सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। सीमा जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम कदम बढ़ाए चलो में हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले सीमा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि पोषण सखी क्या है।
1: पोषण सखी एक वो सामाजिक कड़ी है जो सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको अंतिम महिला तक पहुंचाने की कोशिश करती है, फील्ड में वो काम करती है और उनसे जानकारी, जो उनको जानकारी का अभाव होता है, उन जानकारियों को वो उनसे साझा करती है, उनको रास्ता बताती है कि आप अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रख सकते हैं, खुद का, खुद के परिवार का और बच्चों का, ताकि जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का महिलाओं को लाभ मिल सके। तो ये हमारी पोषण सखी का दायित्व होता है।
0: सीमा जी, ये बताइए कि पोषण सखी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जबकि आपको तो, आप तो वैसे इस फील्ड में कार्यरत हैं, तो आपको तो पता है कि जैसे आंगनबाड़ी में स्वास्थ्यकर्ता या फिर दूसरे भी कई लोग होते हैं इस तरह के कार्य को करने के लिए, तो पोषण सखी की आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: पोषण सखी की आवश्यकता मेन तो इसीलिए पड़ी क्योंकि जो ग्रामीण महिलाएं विशेषकर जिनमें की शिक्षा और जागरूकता का अभाव है, तो उन महिलाओं को ये जो अपने स्वास्थ्य जो भी कर्मी हैं तो उनको ये लगता है कि ये बाहर के व्यक्ति हैं, तो उनको थोड़ा उनसे बात करने में हिचक होती है। तो इससे तो ये ज़रूरत महसूस हुई कि एक ऐसी महिला हो जो इन्हीं के बीच की हो, ताकि वो इनके सवालों को अच्छे से समझ सके, इनकी परिस्थितियों को अच्छे से समझ सके और उसके हिसाब से उनको वो उनके उपाय बता सके। इसीलिए राजीविका में जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं, उन्हीं महिलाओं में से पोषण सखी का चयन करके और उनको प्रशिक्षित किया जाता है।

0: सकता है ताकि वो उन महिलाओं की मदद कर सके, उनके परिवार की मदद कर सके, उन्हें बता सके कि उनको इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ कैसे मिलेगा और कैसे उसका वो फ़ायदा उठाकर अपने परिवार को अच्छा पोषण और अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध करवा सकती है।
1: मतलब ये कि पोषण सखी मुख्य रूप से मतलब समाज में या लोगों के बीच में पोषण के प्रति जागरूकता हाँ फैलाने हाँ का
0: बिल्कुल,
1: काम
0: बिल्कुल,
1: करती है,
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो अब सीमा जी अभी बताइए कि पोषण सखी का चयन किस प्रकार होता है और इसकी योग्यताएं क्या क्या हो सकती है।
0: पोषण सखी का चयन जो राजीविका में आने वाले महिला स्वयं सहायता समूह है उन्हीं की महिला से एक महिला का चयन किया जाता है जिसकी उम्र का 18 साल से ऊपर होना चाहिए और उसने कम से कम 50 महिला स्वयं सहायता समूह की जो बैठक होती है उसमें भाग लेना उसका अनिवार्य है। उसके बाद वो उसके लिए पात्र हो जाती है। फिर उसके बाद वो 10वीं पास होना चाहिए। अगर कभी कभी जैसे ग्रामीण माहौल है तो उसमें 10वीं पास महिला कम ही मिल पाती है तो 8वीं तक भी वो उसका चयन कर लेते हैं। उसके बाद उसका प्रशिक्षण दिया जाता है उसको ताकि वो और अपने में निखार ला सके, वो पोषण सखी के जो भी दायित्व है उनको वो समझ सके। तो इस तरह से पोषण सखी का चयन किया जाता है और उसके अंदर हमारे जो ब्लॉक के अंदर इंटरव्यू होते हैं, हमारे जो ब्लॉक जो मैनेजर हैं उसके साथ जो सामाजिक समिति के जो CLF की सामाजिक समिति के सदस्य होते हैं वो उसके अंदर बैठते हैं, जो क्लस्टर लेवल पे जो मैनेजर होते हैं तो इस तरह की एक कमेटी बनाई जाती है, उससे उनका इंटरव्यू लिया जाता है, लिखित परीक्षा ली जाती है और फिर उसका चयन किया जाता है।
1: यानी कि सभी चरण होते हैं,
0: मौखिक लिखित
1: पोषण सखी का चयन करने के लिए,
0: ताकि वो इस तरह उसका जो मानसिक जो स्तर है वो इस तरह का हो कि वो महिलाओं की समस्या को समझ कर उनका समाधान बता सके।
1: यानी महिला तो समस्या समझ सकेगी हाँ, या नहीं आप उसका पता लगा लेते
0: पता
1: हैं तो
0: उसमें मौखिक भी होता है लिखित भी होता है।
1: तो सीमा जी आपने बहुत ही सरलता से बताया कि पोषण सखी का चयन कैसे और इसकी योग्यता क्या होती है। सीमा जी अब चयन के बाद इसके कार्य क्षेत्र के बारे में ज़रा बताएंगी कि पोषण सखी अपने गांव में, वार्ड में या फिर मोहल्ले में कहां कार्य करने के लिए जिम्मेदार होती हैं।
0: पोषण सखी जो ब्लॉक लेवल पर क्लस्टर बनाए जाते हैं, पंचायत समिति पे क्लस्टर बनते हैं, उन क्लस्टर के अंतर्गत ग्राम संगठन आते हैं और ग्राम संगठन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह काम करते हैं। तो एक पोषण सखी को 7 से 10 ग्राम संगठन दिए जाते हैं और वो उन ग्राम संगठन के क्षेत्र के अंतर्गत जो आने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनको वो प्रशिक्षित करती है, उनको वो स्वास्थ्य सेवाओं का जो लाभ है वो दिलवाती है। और स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं तो वो कई बार हिचकती है आंगनबाड़ी जाने में, तो उनको लेकर जाना उनके घर से आंगनबाड़ी तक, आंगनबाड़ी के अंदर जो भी लाभ जो गर्भवती महिलाएँ हैं, दात्री महिलाएँ हैं, स्तनपान करने वाली महिलाएँ हैं, जो छोटे बच्चे हैं 6 से लेके 24 महीने तक के बच्चे, उनको जो पोषण आहार दिलवाया जाता है उसका फ़ायदा क्या होता है क्या नहीं वो सारा उसके बारे में बताती है। तो ये तो उसके क्षेत्र की बात हो गई कि स्वयं सहायता की समूह की महिलाओं और उनके परिवार को लाभ पहुंचाना। अब उसके जो काम हैं, सबसे पहले जो काम आता है पोषण का, क्योंकि अभी सरकार ने ये देखा कि महिलाओं को इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले, कैसे मिले क्योंकि वो तो हिचक रही है वहाँ जाने में, तो एक कड़ी का काम करती है पोषण सखी, वो उनको वहाँ तक लेके जाती है।
1: यानी आप उनके घर घर जाकर पता हाँ, लगाती हैं कि किसको पोषण की जरूरत हाँ, है,
0: उसको परिवारों का हमें भ्रमण करना होता
1: है,
0: हर महीने हमें 8 से 10 परिवारों का भ्रमण करना होता है, उसके अंदर रजिस्टर होता है हमारे पास, उसके अंदर सारा हम रिकॉर्ड लिखते हैं। तो जो एनीमिया के कैंप लगते हैं, डायरिया के लोग उसको कैंपेन चलते हैं, तो उनसे महिलाओं को जोड़ना और उनके परिवार को जोड़ना, ये सारा हमारे पोषण सखी का काम होता है। और पोषण सखी है वो 4 जो हमारे दिए गए हैं उसके अंदर खाद्य, पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य, इन 4 क्षेत्रों में हमें काम करना होता है। पोषण के अंदर जो समूह बताए गए हैं, जितने भी हमारे 10 समूह बताए गए हैं, तो गर्भवती महिलाओं को उन 10 समूहों में से कितने समूह के अंदर वो रोज डेली का यूज़ कर रही है वो हमें उसके अंदर देखना होता है। तो 10 में से जो 5 समूह है मेन, उनका तो उन्हें यूज़ करना ही है। तो इस तरह की वो हर चीज़ उसको देखती है कि वो क्या खा रही है, उसको कैसा माहौल मिल रहा है, क्योंकि हमारी मीटिंग है वो केवल उन गर्भवती महिलाओं के साथ ही नहीं होती, उनके परिवार के

0: सदस्यों के साथ भी होती है, बिल्कुल।
1: उस सदस्यों में उनका पति आता है, उनकी सास आती है, क्योंकि इन दोनों की भूमिका परिवार में उस गर्भवती महिला की देखभाल के लिए बहुत जरूरी है। गर्भवती महिला जो उसका प्रथम दिन होता है गर्भ का, वहाँ से लेकर 1000 दिन तक बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: 1000 दिन के अंदर जो 270 दिन तो उसके गर्भकाल के आ गए, उसके बाद 180 दिन जो बच्चा 6 महीने का होता है पहले दिन से लेके 6 महीने तक, और उसके बाद की 550 दिन यानी वो बच्चा जब तक 2 साल का नहीं हो जाता। तो ये जो 0 से लेके 2 साल तक का ये जो समय है और जो गर्भकाल के 270 दिन हैं, इन 1000 दिवस का उनको महत्व बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन 1000 दिनों में गर्भवती महिला का और उस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखा जाए तो जो ये कुपोषण चक्र चल रहा है, क्योंकि अगर माता कुपोषित है
0: उसको कम किया जा सकता है,
1: बच्चे भी कुपोषित होंगे,
0: बिल्कुल,
1: और बच्चे कुपोषित होंगे तो बच्चे भी तो आगे आने वाले
0: माता पिता
1: ही है, तो इस तरह से वो एक कुपोषण का चक्र चल रहा है। तो उस कुपोषण को चक्र को खत्म करने के लिए हम लोग काम करते हैं उसके अंदर। और स्वच्छता तो वो तो बहुत जरूरी है, अगर आप अच्छा खाना खा लोगे लेकिन अगर आपकी स्वच्छता नहीं होगी घर के अंदर, साफ सफाई का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो पोषण का इतना फिर महत्व नहीं रह जाता। और खाने पीने की चीज़ें क्या खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज़ का क्या फ़ायदा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे काम करते हैं। हमारा जो प्रशिक्षण है वो जेंडर को लेके भी है, तो जेंडर के अंतर्गत हमारी 17 मॉड्यूल काम करते हैं। उन 17 मॉड्यूल पे हमें काम करना होता है, जिसके अंदर जो घरेलू हिंसा है, बाल विवाह है, तो उस पर भी हमें काम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।
0: तो इसका मतलब आप महिला के गर्भधारण से लेकर उसके बच्चे होने तक और बच्चे के 2 साल तक होने तक आप उनका मतलब पूरी तरह से ध्यान रखती हैं कि भाई इनको
1: उसका
0: क्या
1: पूरा
0: खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए,
1: टीकाकरण उसका कब हुआ, किसका हुआ, किसका नहीं, आंगनबाड़ी में कौन रजिस्टर्ड हुई नहीं हुई, बच्चे का वजन।
0: आप तो बहुत ही भलाई का भी काम कर रहे हैं, पोषण के साथ साथ आप भलाई का भी बहुत काम कर रही हैं। इससे आप जैसे कह रहे हैं कि कुपोषण भी कम होगा, बीमारियां भी कम होंगी, तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे, माँ भी स्वस्थ होगी, तो बच्चा भी स्वस्थ होगा।
1: कुपोषण का सीधा संबंध आजीविका से है, क्योंकि अगर कुपोषित परिवार है, कुपोषित माता, कुपोषित बच्चे हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो फिर जो खर्च है वो दवाइयों में जाएगा,
0: बिल्कुल,
1: दवाइयों में जाएगा तो फिर परिवार का स्तर ऊपर नहीं उठेगा। जो चीज उनकी खुशहाली के लिए लगनी चाहिए वही पैसा उनके दवाइयों में लगता है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो सीमा जी, अब पोषण सखी के कार्यों के बारे में तो आपने बता दिया, अब हमारी बहनों को ये बताइए कि पोषण सखी का लक्ष्य समूह कौन सा होता है?
1: पोषण सखी का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य गर्भवती महिलाएं, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के बारे में पता रखना कि उसको कहाँ दिक्कत आ रही है और उसका उपाय उनको बताना।
0: मतलब महिला और दूसरी महिलाएं भी हो सकती हैं, जैसे कोई कमजोर महिला है, कोई शारीरिक रूप से कमजोर महिला है,
1: बिल्कुल, गर्भवती स्त्रियां है, स्तन जो स्तनपान करवाने वाली हैं, और जो छोटे बच्चे हैं, जो 24 महीने तक के बच्चे हैं, फिर उसके बाद जो महिलाएं जिनमें मेनोपॉज हो रहा है या जो एनीमिया से ग्रसित है, तो उन महिलाओं की भी मदद करना, उन महिलाओं तक भी आयरन की गोलियां और उनको पोषण का महत्व बताना कि आपको भी पोषण उतना ही जरूरी है जितनी एक गर्भवती महिला को, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए हमें सभी के सभी पोषण तत्व बहुत जरूरी हैं। और एक स्वस्थ महिला है वो स्वस्थ परिवार बनाएगी,
0: स्वस्थ परिवार की दूरी है महिला,
1: महिला दूरी है। उसके बाद जो बच्चे हैं, जो किशोर समूह है, किशोरियाँ हैं, जो 12 से लेकर 19 वर्ष तक की लड़की लड़कियाँ, उनको भी हम उसके अंदर जो माहवारी का जो समय है, माहवारी में जो स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, पोषण का ध्यान रखना चाहिए, खाना पीना कैसे करना है, क्या करना, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़े मिथक ज़्यादा प्रचलित है, तो इसलिए उन वो जो लड़की जो बच्चियाँ हैं वो अपनी समस्याएं नहीं बता पाती, ना उनको उनके सवालों का जवाब मिलता है, तो उन सवालों का जवाब पोषण सखी के माध्यम से उनको बहुत अच्छे से मिल सकता है।
0: तो सीमा जी, अभी आपने बताया कि भोजन में पोषक तत्वों की बात आपने बताई, जैसे कि अभी तो उसमें खाद्य पदार्थ अच्छे होने चाहिए, स्वास्थ्य के हिसाब से भोजन या फिर पोषण होना चाहिए, तो उसमें स्वच्छता भी ज़रूरी है, तो इसको

0: खाद्य पदार्थ अच्छे होने चाहिए, स्वास्थ्य के हिसाब से भोजन या फिर पोषण होना चाहिए, तो उसमें स्वच्छता भी जरूरी है। तो इसको स्वच्छता को आप इससे कैसे जोड़ती हैं, उसके बारे
1: बिल्कुल,
0: में क्या कहना चाहेंगी
1: ये तो
0: आप?
1: बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि हम अच्छा खाना खा रहे हैं जिसमें काफ़ी पोषक तत्व हैं, लेकिन अगर वो साफ़ नहीं है, या बर्तन साफ़ नहीं है, या हमारे हाथ साफ़ नहीं है, तो फिर उन पोषक तत्वों का हमें पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ फल फ्रूट सब्जियां कुछ भी अगर खा रहे हैं, तो उन्हें अच्छे से धोकर फिर खाएं,
0: धोकर खाना चाहिए
1: काटने से पहले धोएं, ना कि काटने के बाद, क्योंकि अगर
0: बिल्कुल,
1: काटने के बाद अगर धोएंगे तो उनके
0: उसके
1: पोषक तत्व
0: पोषक
1: सारे
0: तत्व
1: निकल
0: खत्म हो
1: जाएंगे।
0: जाते हैं।
1: हाँ,
0: हाँ
1: और अगर हम खाना बना रहे हैं तो साफ़ हाथों से, हमारी शरीर पूरा एकदम साफ़ होना चाहिए, ताकि जो भी मिट्टी गंदगी वो खाने तक ना पहुँचे। खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, ये ज़रूर हमें हाथ धोने चाहिए अच्छे से। उसमें भी बहुत एक चरण बताए गए हैं कि आप खाने अपने हाथों को बहुत अच्छे से, हथेलियों को, नाखूनों को, जो हमारे हाथों के अंदर गड्ढे हैं, जो उंगलियों के बीच की जगह है, उन सबको बहुत अच्छे से, क्योंकि हाथ धोना हमें लगता है बहुत छोटी चीज़ है,
0: नहीं,
1: लेकिन
0: बहुत बड़ी
1: हाथ
0: चीज़ है ये।
1: को अच्छे से धोना बहुत बड़ी चीज़ है। कि
0: हाँ
1: अगर आप जो जो चीज़ हम जिस चीज़ से हम अंदर अपना पोषण लेके जा रहे हैं, अगर वही साफ़ नहीं है, तो फिर तो मतलब ही नहीं है।
0: बिल्कुल
1: तो स्वच्छता के लिए अगर हम ध्यान रखें, खाने पीने की चीज़ों का, जो हम पानी पी रहे हैं वो साफ़ हो, और अगर सरकार ने बहुत सारी योजनाएं इसके अंदर चलाई है, तो ओपन में जो, खुले में जो शौच की जाती है, अगर हम उसे ध्यान रखें, उसे बंद कर दें पूरी तरह से, और शौचालय का प्रयोग करें, तो फिर जो हमारे खाने के अंदर जो संक्रमण होते हैं वो कम हो
0: वो
1: सकते हैं
0: कम
1: उसके
0: हो
1: अंदर।
0: जाएंगे।
1: हाँ, और शौचालय के प्रयोग के समय फिर उसके बाद हाथ धोने बहुत अच्छे से ज़रूरी है, शौचालय को भी साफ़ रखना चाहिए, और ये हम पूरे परिवार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि खाली महिलाओं पे ये भार आ जाए, तो ये जो स्वच्छता की जिम्मेदारी है, जो कि पूरे परिवार की होनी चाहिए, उसके अंदर खाली महिला की जिम्मेदारी नहीं होती है।
0: बिल्कुल। तो सीमा जी, आप स्वयं एक पोषण सखी हैं, और आप किस प्रकार इस मुकाम तक पहुंची, यानी आपने ऐसा क्या किया कि आपको ये पोषण सखी का पद मिला?
1: इसमें मैं राजीविका से आज 8 सालों से जुड़ी हुई हूँ, और उसकी हर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनमें हम भाग लेते हैं। महिलाओं को आंगनबाड़ी में अगर किसी भी तरह की कोई भी योजनाओं में अगर उनको दिक्कत आती है, तो उसके अंदर मैं उनको बताती रहती थी, और मीटिंगों के अंदर भी जैसे महिलाओं को जागरूकता फैलाना, उनको बताना कि ये आपको ऐसा काम करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, तो फिर वो चीज़ें हमें बहुत मदद की, उन चीज़ों ने मुझे बहुत ऊपर तक पहुँचाया। बस महिलाओं को जो, जैसे मैं, हमारा ग्राम संगठन है, तो ग्राम संगठन में जो भी महिलाएं जुड़ी हुई है, जब वो मीटिंगों के अंदर आती थी, तो वो ऐसे बताती की थी कि भाई मेरे को ये समस्या आ रही है, या जो गर्भवती महिलाएं आती थी, या उनकी बहुएं, जिनकी बहुएं गर्भवती है, वो सास आती थी, तो कई बार अपनी समस्याओं को वो हमारे सामने रखती थी। उनको लगता था कि शायद आपस में बातचीत करने से, चर्चा करने से इसका कोई हल निकल आएगा, या उनको जैसे कि अभी कोई योजनाएं आती तो उनको उनका पता ही नहीं होता था कि इसका क्या, कैसे लाभ मिलेगा, कहाँ जाना चाहिए, या कभी वो अपनी बीमारी के बारे में जैसे बताती, जो वो हर एक को नहीं बता पाती थी, तो फिर उनकी जो समस्याएं थी, तो एक महिला होने के नाते मुझे ऐसे लगा कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए।
0: बिल्कुल
1: तो अगर मैं शिक्षित हूँ, तो मेरी शिक्षा का असली महत्व तभी होगा, असली मेरा जो योगदान इस समाज के प्रति तभी होगा, जब मैं, मेरी जो महिलाएं हैं, मेरी हम उम्र महिलाएं, या मेरे से छोटी या मेरे से बड़ी जो भी है, तो उनका मैं सहयोग कर सकूँ, और उनको मेरे इस शिक्षा का फ़ायदा मिल सके। तो इसलिए फिर मैंने पोषण सखी बनना इसमें तय किया कि मैं पोषण सखी बनकर और महिलाओं का सहयोग करूंगी।
0: तो सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और पोषण सखी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमारी सखियों को दी, और इससे निश्चय ही हमारी बहनों के ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी, और उसके साथ साथ पोषण सखी बनने की प्रेरणा भी उनको मिली होगी कि भी हम भी ऐसे आपकी तरह बने।
1: बिल्कुल।
0: तो और अब हमारे कार्यक्रम की परंपरा है कि धन्यवाद के रूप में हम हमारे मेहमान को उनकी पसंद का एक गीत सुनवाते हैं, तो आप भी अपनी पसंद का कोई गीत बताइए।
1: आप तो ऐसे न थे फिल्म है, और उस मोहम्मद रफ़ी जी ने गीत गाया है, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, तो आज तो मुझे आप यही गीत सुना दीजिए।
0: यानी पोषण के साथ साथ इसलिए ये गाना सुनना चाहते कि पोषण भी आपकी ज़िंदगी में इस तरह से शामिल है।
1: बिल्कुल, अगर हम ये FNHW, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश, इन चारों को अगर ज़िंदगी में शामिल कर ले, तो जिंदगी क्या से क्या हो जाएगी।

0: बहनों, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। बहनों, अब हम हमेशा की तरह आपको सुनवाते हैं उन सफल महिलाओं की कहानी उन्हीं की जुबानी। सुनिए स्वयं सहायता समूह योजना के माध्यम से सफल हुई ये महिलाएं क्या कहती हैं।
1: मेरा नाम अलका है, अलका सोनी। हमारा एक लेडीज का ग्रुप है, सिको खाखरा बनाना बेस्ट आता है तो हम उनकी हेल्प कर देते हैं। जैसे किसी को पर्स वगैरह बनाना तो उसको हेल्प कर देते हैं हम एक दूसरे की सहायता करके। जैसे हम भी है ना, तो 5-7 हैं लेडीज, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि कुछ समय निकालें।
2: मेरा नाम गुड़िया मालिया और मैंने अपने हाथों से ये पेपर मेशी का वर्क स्टार्ट किया है। खुद बनाती हूँ और इसमें मेथी और अखबार से एक पेस्ट बनाया जाता है। पीसी हुई मेथी डाली जाती है, एक पेस्ट बनाया जाता है, उस पेस्ट से ये सब मटेरियल मतलब तैयार करती हूँ। और इसमें नेम प्लेट्स है और ठाटिए हैं और पेन स्टैंड्स है, गमले हैं और कठपुतली है और मिरर है और सीनरी वगैरह भी है और कुछ नए आइटम्स है छोटे छोटे। मेरे को अभी स्टार्ट किया है मैंने 2 साल से, तो मैं मतलब गांव में सीखा है ये सब बनाना, मतलब दादी को और मम्मा को देखा है और ये सब बनाना सीखा है। मतलब मैं चाहती हूँ कि इनको लोग पसंद करें, इसीलिए मैं थोड़ा लेके बाहर आई।
3: मैं गौतम सहायता समूह से हूँ और हमारे पास अगरबत्ती है, सोप है, जो हैंडमेड ही है अपने पास में, बनाते हैं, सिखाते भी हैं बनाना। बाकी थोड़े प्रोडक्ट हमारे पास क्रॉकरी के, ये हम मंगा करके लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं और उनसे सेल करवाते हैं ताकि उनको सेल की अर्निंग का एक जरिया बने उनका, ताकि

0: कोई स्किल मिले कुछ करने का जो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज की डेट में बहुत सी महिलाएं ऐसे हैं जो अकेले हैं, कुछ करना चाहती हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, उसके लिए हम ये थोड़ा सा एक कदम उठाए हुए हैं।
1: मैं महिला हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं सफलता हूँ। जी हाँ बहनों, महिला का हर कदम एक नई कहानी लिखता है, जैसे कि अभी आपने हमारी बहनों से सुनी। और अब समय आ गया है उस सवाल का सही जवाब देने का जो हमने आपसे कार्यक्रम के आरंभ में पूछा था। सवाल था, पोषण सखी की पहली और मुख्य योग्यता क्या है और कम से कम समूह की कितनी बैठकों में उपस्थिति होनी आवश्यक है। बहनों, इस सवाल का सही जवाब इसी कार्यक्रम में बोला गया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। इसका सही जवाब है कि वो महिला समूह की सदस्य होनी चाहिए और कम से कम समूह में 50 बैठकों में उपस्थित होनी चाहिए। बहनों, इसी प्रकार आप सखियों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना से संबंधित नई नई जानकारियाँ लाते रहेंगे और नई नई सखियों से आपको मिलवाते रहेंगे, जैसे कि पोषण सखी, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, बर्तन दीदी और भी बहुत कुछ। और बहनों, अब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। इस अंक के संयोजक थे श्री अमित सिंह, प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और वाचक स्वर था मधु शर्मा का। अब अगले अंक तक यानी अगले माह के दूसरे बुधवार तक अनुमति दीजिए। नमस्कार।

तो बहनों, अभी हमने सुना स्वयं सहायता समूह योजना पर आधारित विशेष कार्यक्रम कदम बढ़ाए चलो। वार्ताकार थी स्वयं सहायता समूह से बनी पोषण सखी सीमा कुलरिया, भेंटकर्ता थी मधु शर्मा, प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजन श्री अमित सिंह का। और अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं एक मधुर गीत।

बहनों, अभी हमने सुना ये खूबसूरत गीत जो दिल को एक नई ताजगी दे गया। कभी कभी नई शुरुआत करने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती, बस अपने आसपास थोड़ा सा सुकून बना लेना ही काफ़ी होता है। और ये सुकून सबसे पहले हमारे घर से ही शुरू होता है। बहनों, मेरी पड़ोसन है जो अक्सर कहती है कि पता नहीं क्यों हर समय थकान सी रहती है और मन भी ठीक नहीं रहता। जब उनसे थोड़ा और बात की तो पता चला कि उनके घर का माहौल ही हमेशा बिखरा रहता था। हर चीज़ इधर उधर पड़ी रहती थी, काम भी ज़्यादा होते थे और मन भी हर समय उलझा उलझा सा रहता था। फिर उन्होंने एक छोटा सा बदलाव किया, रोज़ थोड़ा थोड़ा समय निकालकर घर को सहेजना शुरू किया, सामान को उनकी जगह पर रखना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि घर के साथ साथ उनका मन भी हल्का होने लगा। बहनों, सच में जब घर साफ और व्यवस्थित होता है तो सिर्फ जगह ही नहीं, हमारा मन भी सुकून से भर जाता है। सुबह उठते ही अगर घर सजा संवरा मिले तो दिन की शुरुआत ही मुस्कान के साथ होती है। इसके लिए बहुत बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं होती, बस छोटी छोटी आदतें अपनाइए, जैसे इस्तेमाल के बाद सामान को उसकी जगह पर रखना, रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ करना और बेवजह चीज़ों को जमा न होने देना। खासकर किचन की सफाई पर ध्यान रखें, क्योंकि यहीं से पूरे परिवार की सेहत जुड़ी होती है। थोड़ी देर के लिए खिड़कियां खोल दीजिए, ताजी हवा को अंदर आने दीजिए, यकीन मानिए घर के साथ साथ मन भी तरोताजा हो जाएगा। और बहनों, साफ सफाई सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं है, ये एक एहसास है जो हमारे जीवन को हल्का, सरल और खुशहाल बना देता है। तो बहनों, आज से घर की सफाई को बोझ नहीं बल्कि अपने सुकून का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे आपका हर दिन थोड़ा और हल्का, थोड़ा और खुशहाल हो जाता है। और जब घर साफ हो, सजा संवरा हो, तो वो सिर्फ एक जगह नहीं रहता बल्कि एक एहसास बन जाता है, एक ऐसा एहसास जहाँ सुकून भी होता है, अपनापन भी और छोटी छोटी खुशियाँ भी। इसी खूबसूरत एहसास को महसूस करते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो सखियों दीजिए इजाजत मीनाक्षी स्वर्णकार को, नमस्कार।
1: बहने अभी सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। आज की प्रस्तुति मीनाक्षी स्वर्णकार की थी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से।

0: समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस

0: वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 162,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 296,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर

0: आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत मुकेश के स्वर में है। फिल्म का नाम है सफ़र।

आराधना फिल्म का गीत था ये। स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के थे। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में सुनिए। फिल्म का नाम है यादों की बारात।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। हमारे ये प्रोग्राम आप DRM चैनल 1386 किलोहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे थे। संध्या 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5 बजने वाले हैं। हमारे आज के प्रसारणों की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा के आरंभ में सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 144 विधायकों के समर्थन के साथ विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाली AIADMK ने सरकार का समर्थन किया। एडापड्डी के पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और PMK समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। DMK और अन्य गठबंधन सहयोगी दल मतदान में शामिल नहीं हुए। पुदुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता N रंगास्वामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाड़ी कृष्णा राव और भाजपा के N नमसी वयम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की

0: संख्या में कमी गुजरात और असम की यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देशभर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर ही निर्णायक समाधान प्रदान करना है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। बिबवेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष कुल 85.20% छात्र उत्तीर्ण हुए। छात्राओं का प्रतिशत 88.86 और छात्रों का प्रतिशत 82.13 है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 30,413 पर बंद हुआ। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाद, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इधर आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलोर जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल रात तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना युववाणी कार्यक्रम।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपका दोस्त आनंद
1: और मैं हूं आपकी दोस्त अपनी सौम्या। दोस्तों, आजकल की दुनिया बहुत तेज हो गई है। हर चीज फास्ट, खाना फास्ट, इंटरनेट फास्ट, दोस्ती फास्ट और कई बार रिश्ते भी फास्ट।
0: हाँ, और सबसे तेज तो मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है।
1: बिल्कुल, लेकिन इस भागती दुनिया में कुछ चीजें ऐसी है जो आज भी हमें ठहरना सिखाती है,
0: और उन्हीं में से एक है दोस्तों किताबें।
1: आज सुबह जब मैं बस से आ रही थी, चारों तरफ लोग मोबाइल में व्यस्त थे। कोई रील देख रहा था तो कोई गेम खेल रहा था, लेकिन एक लड़की खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी ही शांति थी।
0: दोस्तों सच कहूँ तो आजकल किताबें पढ़ते हुए किसी को देखना ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में अचानक बारिश हो जाए।
1: बिल्कुल, और तभी मुझे लगा कि आज की बातचीत किताबों पर ही होनी चाहिए।
0: तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पुस्तकें हमारी कैसे एक सच्ची मित्र हो सकती है।
1: क्योंकि किताबें सिर्फ कागज के पन्ने नहीं होते, वे इंसान की सबसे अच्छी साथी भी होती है।
0: वैसे सौम्या, आपकी पहली दोस्ती किस किताब के साथ हुई थी?
1: मेरी पहली दोस्ती परियों की कहानियों से हुई थी। बचपन में मैं रात को कहानी पढ़े बिना सोती ही नहीं थी। मुझे लगता था किताबों के अंदर सचमुच एक दूसरी दुनिया रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं कॉमिक्स पढ़ता था, सुपर हीरो देखकर लगता था कि यार बड़ा होकर दुनिया को बचाऊंगा।
1: और अब
0: बिजली का बिल भरकर खुद को सुपर हीरो समझ लेता हूँ।
1: मैं बचपन की किताबें हमें कल्पना करना सिखाती थी।
0: सही बात है, जब बच्चा कहानी पढ़ता है ना तो उसके दिमाग में अपने चित्र बनते हैं और यही कल्पना आगे चलकर रचनात्मकता बनती है।
1: बिल्कुल, आज बच्चे मोबाइल पर सब कुछ तैयार देख लेते हैं, इसलिए कल्पना की जगह धीरे धीरे स्क्रीन ने ले ली है।
0: और यही कारण है दोस्तों कि पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। लोग कहते हैं कि किताब पढ़ने का समय नहीं मिलता।
1: लेकिन 3 घंटे मोबाइल चलाने का समय मिल जाता है।
0: बिल्कुल, और मजेदार बात तो यह है कि रील खत्म होते ही याद भी नहीं रहता कि क्या देखा था और क्या नहीं।

0: लेकिन एक अच्छी किताब आपको वर्षों तक याद रहती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों किताबें सिर्फ मनोरंजन नहीं कराती, वे हमारी सोच भी बदलती है।
0: और शायद इसीलिए किताबों को सच्चा मित्र कहा जाता है दोस्तों।
1: क्योंकि दोस्तों कभी कभी व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन किताबें हमेशा इंतजार करती रहती है।
0: और रात के 2 बजे भी अगर कोई अकेला महसूस करे और कोई अच्छी किताब खोल ले, तो उसे लगेगा कि उसके आसपास कोई बैठा है, उसके साथ कोई बैठा है जिससे वो बातचीत कर रहा है।
1: बिल्कुल आनंद, मुझे लगता है कि किताबें हमें जज नहीं करती,
0: हाँ,
1: हम जैसे हैं हमें वैसा ही स्वीकार कर लेती हैं।
0: और सौम्या, हर उम्र में किताबें जो है वो साथ भी देती है।
1: बिल्कुल,
0: बचपन में कहानी बनकर, युवा अवस्था में मार्गदर्शक बनकर और बुढ़ापे में यादें बनकर।
1: बिल्कुल, किताबें धैर्य भी सिखाती है। आज हर चीज इंस्टेंट चाहिए,
0: हाँ,
1: लेकिन किताब धीरे धीरे खुलती है।
0: वाह, क्या बात कही है तुमने। और सोचने की आदत भी हमें किताबें ही देती है। आज जानकारी बहुत है लेकिन विचार हमारे कम होते जा रहे हैं। और दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा, बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट मत कर दीजिएगा अपने नाम से कि क्या, कि आज जानकारी बहुत है लेकिन विचार हमारे कम होते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, एक अच्छी किताब इंसान को भीतर से बदल देती है। कई बार सिर्फ एक पंक्ति पूरी जिंदगी का नजरिया बदल देती है।
0: सही कहा, प्रेमचंद को पढ़िए तो समाज समझ में आता है, बच्चन को पढ़ो तो शब्दों का संगीत सुनाई देता है, और दिनकर को पढ़ो तो अंदर से एक ऊर्जा जागती है।
1: बिल्कुल, और गुलजार को पढ़िए तो लगता है शब्द ही सांस लेते हैं।
0: वैसे आपको कागज वाली किताबें पसंद है या ई बुक?
1: ई बुक सुविधाजनक तो है, लेकिन असली मजा कागज वाली किताब में ही है
0: दोस्तों, क्योंकि किताबों की खुशबू डाउनलोड नहीं हो सकती।
1: बिल्कुल, किताबों में तो यादें भी रहती है, कहीं सूखा फूल, कहीं पुराना टिकट, तो कहीं दोस्त की लिखी लाइन।
0: क्या बात कह दी तुमने, किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो जी भी जाती है। उन्हें जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मानसिक तनाव जो बढ़ रहा है आजकल, वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। हाँ, जब मन टूटता है, जब कोई अच्छी सी कविता हमें उम्मीद देती है, जब आत्मविश्वास कम होता है, तो किसी संघर्ष की कहानी हमें हिम्मत देती है।
1: बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात, किताबें हमें अकेले रहना सिखाती है, लेकिन अकेलापन महसूस नहीं होने देती।
0: वाह, ये बात तो दिल को छू गई है सौम्या। कोई पुस्तकालय तुम्हें याद आता है जहाँ कभी तुम गई हो?
1: वहाँ एक अलग सी शांति होती है।
0: हाँ,
1: कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई कविता, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है।
0: जी हाँ दोस्तों, पुस्तकालय सिर्फ किताबों की जगह नहीं होते, वे सपनों की जगह होते हैं। लेकिन लोग लाइब्रेरी से ज्यादा आजकल मोबाइल की गैलरी में मशगूल है।
1: बिल्कुल, और मोबाइल ऐसा दोस्त है जो हर 5 सेकंड में कहता है एक नोटिफिकेशन और देख लो।
0: लेकिन किताबें हमें भीतर से एक शांति देती है, और जैसे जैसे आप किताबें पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो किताबें आपकी आदत बननी शुरू हो जाएगी। लोग कहते हैं कि हमसे किताबें पढ़ी नहीं जाती, छोटे से कदम से आप शुरुआत करें, रोज 10 पेज पढ़िए, अपनी पसंद की किताब चुनें। जरूरी नहीं है कि शुरुआत कठिन साहित्य से हो, कॉमिक्स पढ़िए, यात्रा वृतांत पढ़िए, कविता पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर।
1: बिल्कुल, क्योंकि धीरे धीरे किताबें आदत नहीं जरूरत बन जाएगी,
0: और फिर आपको महसूस होगा कि अच्छी किताबें सच में एक सबसे अच्छी मित्र होती है,
1: क्योंकि वो बिना शोर किए हमें बेहतर इंसान बनाती है।
0: और दोस्तों, जब दुनिया बहुत तेज भागने लगे, जब थोड़ा रुक कर किसी किताब के पन्ने पलटिए, संभव है वहां आपको अपना ही कोई खोया हुआ हिस्सा मिल जाएगा।
1: और अगर आपने लंबे समय से कोई किताब नहीं पढ़ी तो आज ही शुरुआत कीजिए।
0: और याद रखिए कि सच्चे मित्र वो नहीं जो सिर्फ हंसी में साथ दे, सच्चा मित्र तो वो है जो चुप्पियों में भी साथ दे, और किताबें आपकी ऐसी ही मित्र है।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: दोस्तों अब समय है आपसे दो सवाल पूछने का, जिसके जवाब आपको सोच कर रखने हैं। और अगर आप आज का कार्यक्रम थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो उसी में आपको हमारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो हमारा पहला सवाल है, विटामिन ए की कमी से मुख्य रूप से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
5: और दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है हमारे आज के दो सवाल, जिनके जवाब मिलेंगे आपको कार्यक्रम के अंत में और कहीं ना कहीं कार्यक्रम के बीच में भी। तो हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए बिल्कुल ध्यान से।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब समय है एक ऐसी महान हस्ती को याद करने का, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र और सार्वजनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब को।
4: जी हाँ दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद साहब सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि सरलता, विनम्रता और संवैधानिक मूल्यों के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सार्वजनिक पद केवल शक्ति का माध्यम नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी प्रतीक होता है।
5: दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 13 मई 1905 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से प्राप्त की थी। वे पढ़ाई में काफी प्रतिभाशाली थे और कानून की शिक्षा लेकर भारत लौटे थे।
4: और उस समय देश स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से गुजर रहा था। ऐसे में उन्होंने केवल वकालत तक खुद को सीमित नहीं रखा बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के विचारों से भी वे प्रभावित थे।
5: और सौम्या क्या तुम्हें पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ये दिखाता है कि वे सिर्फ राजनीति करने वाले व्यक्ति नहीं थे बल्कि देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले सच्चे देशभक्त भी थे।
4: बिल्कुल, आज के युवाओं के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे कई नेताओं ने सत्ता पाने से पहले संघर्ष का कठिन रास्ता तय किया था। फखरुद्दीन अली अहमद जी भी उन्हीं नेताओं में शामिल थे जिन्होंने देश हित को व्यक्तिगत सुख सुविधा से ऊपर रखा।
5: दोस्तों आजादी के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे केंद्र सरकार में कृषि, शिक्षा और औद्योगिक विकास जैसे विभागों से जुड़े रहे। प्रशासनिक कार्यों में उनकी गंभीरता और संतुलित सोच की काफी प्रशंसा की जाती थी।
4: बिल्कुल, और इसके बाद वर्ष 1974 में वे भारत के 5वें राष्ट्रपति भी बने। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण दौर से जुड़ रहा है।
5: दोस्तों राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। उनका व्यक्तित्व शांत और सौम्य था। वे दिखावे से कोसों दूर रहते थे और सादगी पूर्ण जीवन जीना पसंद करते थे।
4: दोस्तों कई लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति की महानता उसके व्यवहार से पहचानी जाती है। फखरुद्दीन अली अहमद का व्यवहार बेहद विनम्र था। वे लोगों से बहुत आत्मीय

0: मान्यता से मिलते थे और सभी वर्गों के लोगों का सम्मान भी करते थे।
1: तो दोस्तों, आज हम उनकी जयंती पर उन्हें याद कर रहे हैं। तब हमें यह भी याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र केवल नेताओं से नहीं चलता, बल्कि जागरूक गरीब जागरूक नागरिकों से भी मजबूत होता है।
0: बिल्कुल, और ऐसे अवसर हमें इतिहास से जोड़ने का मौका देते हैं। युवाओं को चाहिए कि केवल सोशल मीडिया की तत्कालिक सूचनाओं तक सीमित ना रहे, बल्कि देश के इतिहास और उन व्यक्तित्वों को भी पढ़ें जिन्होंने भारत के निर्माण में योगदान दिया है।
1: फखरुद्दीन अली अहमद का जीवन हमें समर्पण, सादगी और कर्तव्य निष्ठता का संदेश देता है।
0: उनकी जयंती पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके योगदान को नमन करते हैं।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब समय है भारतीय साहित्य के एक ऐसे महान लेखक को याद करने का जिन्होंने अपनी सरल लेखन शैली और मानवीय संवेदनाओं से लाखों पाठकों के दिल में जगह बनाई। दोस्तों, आज हम श्रद्धापूर्वक नमन कर रहे हैं आर के नारायण को।
1: जी हाँ दोस्तों, आर के नारायण भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय जीवन की छोटी छोटी बातों, आम लोगों की भावनाओं और समाज की सादगी को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है।
0: सौम्या, आर के नारायण का जन्म वर्ष 1906 में चेन्नई में हुआ था। उनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण स्वामी था, लेकिन साहित्य की दुनिया में आकर वे आर के नारायण के नाम से प्रसिद्ध हुए।
1: और उन्होंने अपने लेखन में एक काल्पनिक नगर मालगुड़ी की रचना की।
0: हाँ जी।
1: जो आज भी भारतीय साहित्य में बेहद

0: लोकप्रिय है। मालगुड़ी सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि भारतीय समाज का जीवंत चित्र था। वहाँ के पात्र, उनकी समस्याएं, उनका हास्य और उनकी भावनाएं पाठकों को अपने आसपास की दुनिया जैसी ही लगती थी।
1: बिल्कुल, और मालगुड़ी जब दूरदर्शन पर आता था तो उसको देखने के लिए भीड़ उमड़ा करती
0: बिल्कुल
1: थी। और उनकी प्रसिद्ध कृतियों में स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, मालगुड़ी डेज जैसी रचनाएं शामिल है। खास बात तो ये थी कि उनका लेखन बहुत सरल और सहज होता था, लेकिन उनके भीतर जीवन की गहरी समझ थी। जीवन की गहरी जो समस्याएं होती है उनको उभार कर वो लाते थे।
0: बिल्कुल आनंद, आज भी मालगुड़ी डेज का नाम सुनते ही लोगों के मन में बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित उनका धारावाहिक भी काफी लोकप्रिय हुआ था।
1: जी हाँ दोस्तों, आर के नारायण ने भारतीय जीवन को बिना किसी बनावट के प्रस्तुत किया। उन्होंने दिखाया कि साधारण लोगों की जिंदगी में भी कितनी सुंदर कहानियां छिपी होती है।
0: उनकी लेखनी में हास्य भी था, संवेदना भी और जीवन का यथार्थ भी। शायद यही कारण है कि उनका साहित्य आज भी हर उम्र के पाठकों को पसंद आता है।
1: और उन्हें साहित्य के क्षेत्र में कई सम्मान भी प्राप्त हुए, जिनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मान शामिल है दोस्तों।
0: और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। उनका साहित्य हमें यह सिखाता है कि बड़े विचारों को सरल शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है।
1: और शायद यही किसी महान लेखन की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह अपने पाठकों से, पाठकों के दिल में हमेशा जीवित रहे, अपने शब्दों के द्वारा हमेशा उन्हीं तरफ बना रहे। और वास्तव में दोस्तों, जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में हम सभी लोग एक सफ़र में हैं और उस सफ़र की मंजिल निश्चित रूप से यही है कि हम अपने जीवन को सफल बना सके। तो आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: RBI कहता है,
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग स्वाद पर ज्यादा ध्यान देते हैं और पोषण को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन स्वस्थ शरीर के लिए सही पोषण बहुत जरूरी है।
5: बिल्कुल सही कहा सौम्या, और विटामिन ए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
4: बिल्कुल,
5: और यह न सिर्फ हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने का काम करता है, बल्कि हमारी त्वचा, हमारी हड्डियों और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है।
4: यानी अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
5: हाँ, बिल्कुल। और विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, खासकर रात में देखने में परेशानी होती है, जिसे रतौंधी भी कहा जाता है। इसके अलावा शरीर जल्दी थकने लगता है और बार बार बीमार पड़ने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है।
4: बिल्कुल, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए यह विटामिन बहुत जरूरी है, क्योंकि यह शरीर के विकास में मदद करता है।
5: बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि विटामिन ए हमें आसानी से रोजमर्रा के भोजन में मिल सकता है।
4: तो आनंद, हमारे श्रोताओं को बताओ कि किन किन चीजों से हमें विटामिन ए मिल सकता है।
5: दोस्तों, गाजर खाइए, शकरकंद खाइए, पालक, मेथी, टमाटर खाइए, दूध, मक्खन, अंडा अपने खानपान में शामिल कर लीजिए, और आम, पपीता और हरी पत्तेदार सब्जियों को तो बिल्कुल मत भूलिए, और इनमें है विटामिन ए भरपूर मात्रा में।
4: यानी रंग बिरंगी सब्जियां और फल सिर्फ खाने में अच्छे नहीं लगते, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं।
5: सही कहा, लेकिन आजकल युवा जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और उनमें ही ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, इससे शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। दोस्तों,
4: बिल्कुल, इसलिए हमें अपने खानपान में संतुलन बनाए रखना चाहिए और रोजाना पौष्टिक आहार ही लेना चाहिए।
5: और दोस्तों, सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं, बल्कि नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।
4: बिल्कुल, क्योंकि स्वस्थ युवा ही देश का उज्जवल भविष्य बनाता है।
5: तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प ले कि हम पौष्टिक भोजन अपनाएंगे, जंक फूड कम करेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हम अच्छा पोषण युक्त खाना खाएंगे तो हमारे पास रहेगी खूब एनर्जी। तो चलिए सुनते हैं एक एनर्जेटिक गीत।

0: दोस्तों, जब भी ज्वालामुखी का नाम आता है तो हमारे मन में आग के बड़े बड़े पहाड़, धुआं और बहता हुआ लावा दिखाई देने लगता है। लेकिन ज्वालामुखी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक प्राकृतिक प्रक्रिया है।
1: बिल्कुल दोस्तों, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर मौजूद वह स्थान होता है जहां से पृथ्वी के अंदर का गर्म मैग्मा, गैसें और राख बाहर निकलती है।
0: आनंद, क्या आप हमारे दोस्तों को ये बता सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर इतना गर्म पदार्थ क्यों होता है?
1: जरूर, क्यों नहीं। पृथ्वी के अंदर का भाग अत्यधिक गर्म होता है और वहां पिघली हुई चट्टाने होती है जिन्हें मैग्मा कहा जाता है। और जब पृथ्वी के अंदर दबाव बढ़ता है तो यही मैग्मा बाहर निकलने का रास्ता खोजता है और विस्फोट के रूप में बाहर आता है। बाहर निकलने के बाद यही मैग्मा लावा कहलाता है दोस्तों।
0: यानी ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा को बाहर निकालने का एक माध्यम है।
1: हाँ, बिल्कुल सही। ज्वालामुखी मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुप्त ज्वालामुखी और तीसरा मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं दोस्तों जो समय समय पर फटते रहते हैं, और सुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो लंबे समय से शांत है लेकिन भविष्य में फट सकते हैं, और मृत ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें भैया अब विस्फोट की संभावना बहुत कम है।
0: वाह, ये जानकारी सचमुच बहुत रोचक है। लेकिन अब ज्वालामुखी फटता है तब क्या क्या नुकसान हो सकते हैं?
1: भाई, ज्वालामुखी विस्फोट से तेज गर्म लावा निकलता है जो पेड़ पौधों, घरों और सड़कों तक को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा राख और जहरीली गैसें हवा को प्रदूषित भी करती है जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। कई बार दोस्तों विस्फोट के कारण भूकंप और सुनामी जैसी आपदाएं भी आ जाती है जो जन मन के लिए बड़ी हानिकारक होती है।
0: यानी मानव जीवन और पर्यावरण दोनों के लिए ही बड़ा खतरा बन सकता है।
1: हाँ, लेकिन ज्वालामुखी के कुछ फायदे भी है। देखिए, कई बार क्या होता है, कोई चीज अगर विस्फोट विनाश के लिए आती है तो कई बार वो निर्माण की भी कारक बनती है।
0: बिल्कुल।
1: तो ज्वालामुखी से निकलने वाली ये राख मिट्टी को उपजाऊ बनाती है जिससे खेती अच्छी होती है। कई खनिज पदार्थ भी ज्वालामुखी क्षेत्रों से ही बाहर निकलते हैं और लोगों को प्राप्त होते हैं, मुख्य रूप से जो धात्विक खनिज होते हैं।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, दुनिया में कई प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। जापान का माउंट फूजी, इटली का माउंट एटना और अमेरिका का माउंट सेंट हेलेंस काफी प्रसिद्ध है।
1: अरे, दुनिया को ही देखोगे क्या, भारत में भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन द्वीप का ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है।
0: आनंद, क्या वैज्ञानिक पहले से पता लगा लेते हैं कि ज्वालामुखी कब फटेगा?
1: बिल्कुल, वैज्ञानिक आधुनिक तकनीक की मदद से ज्वालामुखी की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। भूकंप के छोटे झटकों, गैसों के उत्सर्जन और तापमान में बदलाव का अध्ययन करते हैं ताकि समय रहते लोगों को चेतावनी दी जा सके।

0: बिल्कुल, सचमुच विज्ञान और जागरूकता मिलकर लोगों की सुरक्षा को बहुत मदद करते हैं।
1: लेकिन लोग तो तब जागरूक होंगे जब उन्हें पता चलेगा आज की रोजगार सूचना के बारे में।
0: तो हमारे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय रेलवे द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर भर्ती निकाली गई है।
1: जी हाँ, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB ने लगभग 11,127 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती के लिए ITI डिप्लोमा से संबंधित तकनीकी योग्यता रखने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया मई 2026 से शुरू हो रही है और उम्मीदवारों का चयन CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आवेदन के लिए उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर देख सकते हैं।
0: तो अब दोस्तों, हमने आपसे कार्यक्रम से पहले दो सवाल पूछे थे, अब समय है उनका जवाब देने का। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आपको जवाब मिल भी गए होंगे। हमारा पहला सवाल था, विटामिन ए की कमी से मुख्य रूप से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उसका सही जवाब है आंखें।
1: और दोस्तों, हमारा दूसरा उत्तर तो हमने अभी अभी आपको इशारों में बता दिया था। दूसरा प्रश्न था कि साहब, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये दोस्तों हमारे थे सवाल। आइए चलते हैं जाते जाते एक सुंदर से गीत की ओर आपसे मिलते हुए।

0: बिल्कुल दोस्तों, जिया लागे ना, हमारा भी आप लोग के बिना बिल्कुल जिया नहीं लगता। तो आपसे फिर मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम युववाणी में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें सुनते रहिए। अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना युववाणी कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

सुगम संगीत प्रसारित होगा 7:45 पर और शास्त्रीय संगीत रात 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में सुनिएगा शौकत हुसैन खां का गायन।

ग्रामीण भाई अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 7 बजे। आज के इस कार्यक्रम में चर्चाएं होंगी बीज उपचार का महत्व, कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई उपरांत देखभाल, वीबी जी राम जी, जल की बचत ही जल उत्पादन विषयों पर। साथ ही होंगे लोकगीत।

फिल्मी युगल गीत हम आपको सुनवाएंगे 6:05 पर। अलावा इसके फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 8 बजे, रात 9:15 पर और रात्रि 10 बजे।

हम आपको एक बार फिर से याद दिलवा दें, रात 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे चर्चा का विषय है कार्यक्रम

ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली के

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: पूर्ण भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला

0: प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ युगल गीत।

दोस्तों, ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता, लेकिन हर कोई इतना ज़रूर चाहता है कि उसे ये पता हो कि विपत्ति के समय, दुख के समय उसके साथ कौन होता है, उसके साथ कौन अपना दोस्त होता है, कौन हम सफ़र होता है। ऐसे ही सवाल थे, ऐसे ही विश्वास के साथ वादे थे इस गीत में, जिसे हमने लिया था फिल्म मेरे हमसफ़र से। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। आनंद बख्शी की इस गीत रचना को शुरू में ढाला था कल्याण जी आनंद जी ने। और दोस्तों, बात करें हम हमारे बीकानेर के मौसम की, तो हल्की फुहारें कहीं चली है, लेकिन कहीं तेज हवाएं हैं, साथ में धूल भी भरी हुई है। कब क्या हो जाए क्या पता। और मौसम विभाग ने भी सचेत रहने की चेतावनी और सुझाव दिया है। बहरहाल, कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म निकाह की ये गीत रचना। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और सलमा आगा की। गीत रचना हसन कमाल की है और संगीत रवि का।

0: जिंदगी में कौन आरजुएं नहीं पालता, न हो आरजुएं तो फिर दिल क्या मांगता। ऐसा ही कुछ था फिल्म निकाह के इस गीत में, जिसे गाया था महेंद्र कपूर और सलमा आगा ने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: दोस्तों, जिंदगी में कौन कब मिल जाए किसको पता, मगर याद कोई रह जाए ये सबको पता।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये था जाने अनजाने फिल्म का गीत। SH बिहारी के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। दोस्तों, जिंदगी में हमारे हमसे क्या चाहता है कोई हमारा, जिंदगी में हमसे क्या चाहता है कोई हमारा, बस चाहता है हमसे प्यार हमारा।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये था आनंद आश्रम का गीत। इंदिवर के बोल थे और श्यामल मित्रा का संगीत। दुनिया में क्यों रहे कोई किसी से बेगाना, क्यों ना हम एक दूसरे के लिए अमर हो जाएं।

दोस्तों, जिंदगी में जब सुर एक हो जाते हैं तो दिल भी एक हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ है मन्ना डे और उषा मंगेशकर की आवाजों में गाए फिल्म दिल की राहें से इस गीत में।

मन्ना डे और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में गाए फिल्म दिल की राहें के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है।

6:30 होने वाले हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। नतीजों में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय की गई और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फलोदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए ये निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि इस खरीफ सीजन के लिए किसानों को करीब 2,60,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सूरजमुखी के बीजों के लिए की गई है। इसके अलावा कपास के दाम 557 रुपए और तिल के 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं। नई दरों के अनुसार ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2,461 रुपए, हाइब्रिड ज्वार का 4,023 रुपए और बाजरा का 2,900 रुपए प्रति क्विंटल होगा। अरहर दाल के लिए 8,450 प्रति क्विंटल एमएसपी तय की गई है। इस सीजन में सरकार द्वारा 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल की खरीद का अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। देश भर में कुल 85.20% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणामों में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। छात्राओं का नतीजा 88.86% रहा, जबकि छात्रों का परिणाम लगभग 82% रहा। बोर्ड के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय की इन परीक्षाओं में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 15,07,000 से अधिक बच्चे सफल रहे हैं। वहीं अजमेर रीजन का कुल परीक्षा परिणाम 86.78% रहा। यहां 88,000 से अधिक विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी थी, जिसमें से 76,469 विद्यार्थी सफल हुए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वास जताया है कि कृषि शिक्षा के जरिए देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। वे आज कोटा में कृषि विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री बागड़े ने कहा कि किसानों को उन्नत बीज और नई तकनीक

0: से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने युवाओं से स्वरोजगार अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में ड्रोन, एआई और स्टार्टअप जैसे नवाचारों को अपनाने को कहा। दीक्षांत समारोह में 358 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 14 को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की नई प्रयोगशालाओं और अकादमिक भवनों का लोकार्पण भी किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। नए परीक्षा कैलेंडर के अनुसार वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन आगामी 28 जून को किया जाएगा। वहीं लिपिक ग्रेड द्वितीय और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2025 5 जुलाई को होगी। बोर्ड ने पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की तारीख में आवश्यक कारणों से बदलाव किया है। अब ये परीक्षा 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पिछले कैलेंडर में दी गई अन्य परीक्षाओं की तारीखें यथावत रहेंगी। राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़ा और रिकॉर्ड में हेरफेर करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों में मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार और राजस्थान लोक सेवा आयोग का कर्मचारी मान सिंह शामिल है। जांच में सामने आया है कि राजेश ने अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास कर नियुक्ति प्राप्त की थी। बाद में उसने आयोग के रिकॉर्ड में फोटो बदलने के लिए मान सिंह से 8 लाख रुपए में सौदा किया। एसओजी ने राजेश को इसी महीने की 18 तारीख तक पुलिस रिमांड पर लिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि यमुना जल समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ महत्वपूर्ण सहमति बनी है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद श्री शर्मा ने मीडिया को बताया कि यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।
1: किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत हुई है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का RRTS का मामला था उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक दिल्ली हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुंचे। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है।
0: बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि किशाऊ बांध परियोजना के काम में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बांध के बनने से हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत 5 जिलों के लिए 18 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें दौसा, चूरू, डीडवाना, कुचामन, फलोदी और बालोतरा के जिला उत्पाद शामिल हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई बैठक में परियोजनाओं के पहले चरण के लिए 10,76,00,000 रुपए जारी किए गए। इस राशि से दौसा और डीडवाना कुचामन में पत्थर उद्योग, चूरू में लकड़ी उत्पाद, फलोदी में सोना मुखी भंडारण और बालोतरा में टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग के लिए आधुनिक केंद्र और लैब बनाई जाएंगी। इससे स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता सुधारकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने आज ही स्वायत्त शासन विभाग और PHED के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के शहरों में संचालित सीवरेज और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तर, पश्चिमी और पूर्वी भागों में पड़ रही प्रचंड गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और बीकानेर जिले लू की चपेट में रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज फलोदी सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। जैसलमेर में दिन का तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं बाड़मेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। जिला मुख्यालयों सहित कस्बों में दोपहर के समय बाजार सूने नजर आए। राजधानी जयपुर में भी लू जैसे हालात रहे। कई स्थानों पर प्रशासन ने सड़कों पर पानी का छिड़काव

0: डिग्री सेल्सियस मापा गया। जैसलमेर में दिन का तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं बाड़मेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। जिला मुख्यालयों सहित कस्बों में दोपहर के समय बाजार सूने नजर आए। राजधानी जयपुर में भी लू जैसे हालात रहे। कई स्थानों पर प्रशासन ने सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया। मौसम केंद्र जयपुर ने सीमावर्ती जिलों के लिए कल भी भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। इस बीच आज कई उत्तर पूर्वी जिलों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से 2 दिन का सघन नाकाबंदी अभियान चलाया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर आयोजित इस अभियान के तहत 727 स्थानों पर बड़ी संख्या में वाहनों की कड़ी जांच की गई। अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 7,000 से अधिक लोगों के चालान किए गए। प्रदेश भर में इन दिनों डिजिटल जनगणना 2027 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु ने स्वगणना कर लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। शहर में जगह जगह हमारी जनगणना हमारा अधिकार जैसे नारों वाले पोस्टर लगाकर लोगों को इस अभियान से जुड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं झुंझुनू में आज प्रगणकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। झुंझुनू जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में बड़ी संख्या में खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि पिछले साल जनवरी से इस वर्ष 2026 तक जिले में विशेष अभियान के तहत कुल 837 सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल्स में से 223 नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कल नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य समावेशी शासन को मजबूत करना, नीतिगत पहुंच बढ़ाना और पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। नतीजों में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय की गई और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फलोदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं लक्ष्मी चंद नागर। हाड़ौती अंचल का 12 जिला प्राचीन मंदिरों, शेरगढ़ किले और अन्य पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इस कृषि प्रधान क्षेत्र को वराह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों 12 जिला भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है। दिन का तापमान हाल ही में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से लोग बेहाल हो रहे हैं। वहीं अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। चिकित्सा संस्थानों में लू और तापघात के रोगियों के उपचार के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। 15 दिन के ग्राम रथ अभियान के तहत जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ग्राम रथ अंता, अट्रू, छबड़ा और किशनगंज शाहबाद क्षेत्र के गांवों में इन योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के बारे में भी ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों को बताया जा रहा है। एलईडी मोबाइल वैन के जरिए ऑडियो वीडियो प्रस्तुति हो रही है। वहीं नुक्कड़ नाटक और संध्या चौपालों में भी लोगों की अच्छी भागीदारी रही है। अब तक अंता, मियाड़ा, अटरू, रिछंदा, किशनगंज और छबड़ा सहित विभिन्न पंचायतों में ग्राम रथ पहुंचने पर ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया और विभिन्न जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी ली। जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने अंता की तुलसा पंचायत में ग्राम रथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम

0: श्री देवासी ने बताया कि इस अभियान के तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आम लोगों की समस्याओं और सुझावों पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। इसके लिए ग्राम रथों में शिकायत और सुझाव पेटिका लगाई गई है। जिला प्रभारी मंत्री ने बामला ग्राम पंचायत पर रात्रि चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बाल मुकुंद असावा ने पिछले दिनों 12 जिले के कलेक्टर के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिले के विकास की प्राथमिकता बताई। श्री असावा ने सहरिया बहुल शाहबाद क्षेत्र का दौरा कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बास्तुनी के जनजातीय बालक छात्रावास का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए छात्रावास में पर्याप्त संख्या में कूलर और पंखे लगाने तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने छात्रावास परिसर की नियमित रूप से साफ सफाई करने को भी कहा। प्रमुख जनगणना अधिकारी और जिला कलेक्टर ने बीते दिनों स्वगणना कर जनगणना प्रक्रिया 2027 के पहले चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपना ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करने की अपील की। जिले में जनगणना कार्य को सुव्यवस्थित संपन्न कराने के लिए 2242 प्रगणक और 377 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। जिले में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से आमजन की सुविधा के लिए 5 से 7 मई तक पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय विदेश सेवा के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विपुल देव ने बताया कि पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सुलभ, सरल और अनुकूल बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से जिले में निवास करने वाले नागरिकों को अपने स्थानीय क्षेत्र में ही पासपोर्ट बनवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उनके समय और संसाधनों की बचत सुनिश्चित होगी। इसी क्रम में मोबाइल पासपोर्ट वैन के माध्यम से 3 दिवसीय पासपोर्ट शिविर का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन 40 पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अठरू बारा विधायक राधेश्याम बैरवा ने 4 मई से अपने विधानसभा क्षेत्र में आपका विधायक आपके द्वार जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किया। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों और वार्ड स्तर पर लोगों की समस्या का त्वरित निस्तारण करना है। जिला कलेक्ट्रेट भवन पर पिछले दिनों हवाई हमला होने की आपात स्थिति की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान हवाई हमले की सूचना से समूचा क्षेत्र सायरन की आवाजों से गूंज उठा। बचाव और सुरक्षा दलों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किए। जिला कलेक्टर के साथ ही पुलिस अधीक्षक ने राहत और बचाव कार्य की कमान संभाली। साथ ही जिला मुख्यालय पर ब्लैक आउट कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों की लाइटों को बंद करवाया गया। विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य में 12 में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। 12 जिले की विरासत और हमारे प्रयास विषय पर संगोष्ठी रखी गई। कार्यक्रम में कला संस्कृति विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी संदीप सिंह जादौन ने बताया कि जिले की ऐतिहासिक धरोहरें 12 की सांस्कृतिक पहचान है। इसके साथ ही 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्रीय मंत्रिमंडल खरीफ विपणन सीजन 2026-27 सारू 14 शाखा रा सरकारी मूल माय बढ़ोतरी री मंजूरी दीनी। CBSE 12वीं कक्षा रा इम्तिहान रो नतीजो जारी कीनो, लड़कियां बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करी ची। और प्रदेश रा आतुणी और लंकाऊ उगनी हल्का माए जबरदस्त गर्मी, फलौदी और जैसलमेर माए पारो 46 डिग्री सेल्सियस रे पार पुग्यो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल विपणन सीजन 2026-27 सारू खरीफ री 14 शाखा रा सरकारी मूल माय बढ़ोतरी री मंजूरी दे दीनी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली माय आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि मौजूदा खरीफ सीजन सारू किसाना ने करीब 2,60,000 करोड़ रुपया रो चुकारो करियो जावेला।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 800

0: 24 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव बतायो कि सब 32,622 रुपया प्रति क्विंटल री बढ़ोतरी सूरजमुखी रा बीजा सारू करी ची है। इंसा गई कपास रा दाम माए 557 रुपया और तिल्ली रा मोल माए 500 रुपया प्रति क्विंटल री बढ़ोतरी करण रो फैसलो करी चियो। इन फैसला पाछे ग्रेड ए धान रो मोल 2,461 रुपया, हाइब्रिड ज्वार रो मोल 4,023 रुपया और बाजरा रो मोल 2,900 रुपया प्रति क्विंटल फैला। तुअर्री दाल रो सरकारी मोल 8,450 रुपया प्रति क्विंटल तय करीचियो है। श्री वैष्णव बतायो कि इन सीजन माए सरकार का न्यू 824 लाख मीट्रिक टन 32 आखारे खरीदी रो अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 37,500 करोड़ रुपया रा खर्चू कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनावां सारू खास योजना ने ही मंजूरी दीनी।
0: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व से, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 12वीं कक्षा री परीक्षा रा नतीजा रो आज ऐलान कर दिनो। ओ इम्तिहान देवनवाला मायो 85.20% पास फेक्या। इम्तिहान माए लड़कियां रो नतीजो 88.86%, जदके लड़का रो नतीजो 82.13% रह्यो। बोर्ड रे मुजब विज्ञान वाणिज्य और कला संकाय माए लीरीजी परीक्षा माए 17,68,092 विद्यार्थी शामिल फिया, जमायों 15,07,092 पास फेक्या। अजमेर रीजन इम्तिहान देवन वाला मायों 86.78% पास फेक्या। अजमेर रीजन माए इम्तिहान देवन वाला 88,118 विद्यार्थियां मायों 76,469 पास फेक्या। हालांकि अजमेर रीजन माए लाडला साल री तुलना माए इन साल पास फेवन वाला रो प्रतिशत कम रह्यो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आवता दिना ली जावन वाली न्यारी न्यारी भर्ती परीक्षावां रो नुवो कार्यक्रम जारी कीनो है। इन मुजब वन पाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 28 जून न फैला, जदके सेकेंड ग्रेड क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2025 5 जुलाई न ली जावेला। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 24 जुलाई न फैला। राज्य पुलिस रो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 माए फर्जीवाड़ो करण और रिकॉर्ड माए हेराफेरी करण रा आरोप माए 2 जना ने गिरफ्तार कीना है। पकड़ी गया आरोपिता माए राजेश कुमार और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर रो कर्मचारी मान सिंह शामिल है। जांच रे दौरान राजेश कानियों वानी ठौड़ दूजा न बिठार परीक्षा पास कर और नौकरी हासिल करण री ठा पड़ी। इन पाछे वहाँ का न्यू RPSC रा रिकॉर्ड माए फोटो बदली करण सारू मान सिंह 8 लाख रुपया माए सौदा करण रेठा पड़ी। SOG आरोपित राजेश कुमार ने 18 मई ताई रिमांड माथे ले लीनो है। राज्यपाल और विश्वविद्यालय रा कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े कहो है कि खेतीबाड़ी में जुड़ी भणाई लिखाई रे जरिए देश माए खाद्य सुरक्षा तय करी जा सके है। वे आज कोटा माए कृषि विश्वविद्यालय रा 9वां दीक्षांत समारोह माए बोल रहा है। श्री बागड़े कहो कि किसाना ने उन्नत बीज और नुवी तकनीक जोड़ और खुदरेपाण उबा करया जा सके है। राज्यपाल नौजवाना नौकरी करण वाला रे बजाय नौकरी देवन वाला बनबा सारू कहो। वह खेतीबाड़ी माए ड्रोन AI और स्टार्टअप काम लेवन सारू कहो। जलसा माए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणाई नौजवानों तालीम ने किसाना और देश का भला सारू काम लेवन बाबत कहो। दीक्षांत समारोह माए 358 विद्यार्थियों ने डिग्रियां और 14 विद्यार्थियों ने सोना रा तमगा देर नवाजी चिया। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। यमुना नदी रा पानी जुड़िया करार रे बारा माए राजस्थान और हरियाणा सरकार बीच खास सहमति बनी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज नई दिल्ली माए जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा रा मुख्यमंत्री

0: फिर सुनली रहो। केंद्रीय मंत्रिमंडल खरीफ विपणन सीजन 2026-27 सारू 14 शाखा सरकारी मूल में बढ़ोतरी री मंजूरी दीनी। CBSE 12वीं कक्षा रा इम्तिहान रो नतीजो जारी कीनो, लड़कियां बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करी जी। अर प्रदेश रा तुणी अर लंकाऊ उगनी हल्का माए जबरदस्त गर्मी। फलौदी अर जैसलमेर माए पारो 46 डिग्री सेल्सियस रे पार पुग्यो। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 7 बजे हैं। अब ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम री उड़ीक राखणिया सगड़ा ही हेताड़ू भाया ने और बहना ने बजरंग सारस्वत
1: और आप रो हेताड़ू साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य रा
0: घना घना राम राम
1: सा। बजरंग भाई आपने भी घना घना राम राम और सगड़ा सुनने वाला जितना भी किसान भाई बहन है आप सगड़ा ने मारो फिर हुए तेणु राम राम।
0: बिल्कुल सा नमामि जी आई बात हूँ क्यों आपने भी और सुनने वाला भाया ने घना घना राम राम सा। आज देखियो आप मौसम रा तेवर जका है किया के पल पल पलटो मारियो है। कदी तेज तावड़ो है कदी आबे में बादलिया छारिया है तेज आंधी आ रही है और एकाएक ही मौसम जको है वो बदल रही है। और नमामि भाई आपारे अठे ओ जको जलवायु परिवर्तन हो रही है इरा जी का परिणाम क्यों या इरा बुरा परिणाम क्यों ए आपाने अठे इरा जी का कई रंग है मौसम रा ए एक ही समय में एक ही दिन में देखने मिल रहा है।
1: पण बजरंग भाई एक बात और है कि आपने अठे जिकी राजस्थान में कहबत भी है कि जेठ बाजरी जिकी हुए बाग्यारे हुए।
0: हाँ सर।
1: तो जेठ है माने अगर बरखा हो रही है और इर माने बाजरी बावे तो भाग्यशाली हुए बारे क्या बाजरी चोखी निपचे। पण भाग्यशाली तो एक आपारी कैविडी कहबत है मूल रूप से बीज जिको है वो अगर उपचारित हुए बीज बढ़िया हुए तो अपारी जिकी बाजरी है बा विशेष तौर से बढ़िया निप जाए। बाजरी क्यों और दूसरा भी आप अगर आगे जा रहा जब आप खेत बावाला तो बी टाइम री फसल बावने से पहला आप जो बीज है बिने उपचारित कर सा तो बिने क्या उपचारित करने से फसल जिकी है आपने बहुत बढ़िया मिले ली।
0: बिल्कुल सर आप जिया के तैयारी कर बीज बोवा तो बढ़िया रहे जिया के बीज उपचार या बात करी बिना तैयारी रे आपा मैदान में उतर जावा तो भाई पछे तो आपा ने सामने दी सही है कि कहीं होना है।
1: सही है।
0: तो जिका किसान भाई बीज रो उपचार कर बिने बोवे है बारे खेत में फसल एक जीसी हुए उत्पादन अच्छो हुए और बीज रे खराब होने रो डर जिको है वो खत्म हो जावे और फसल में कोई भी भांतरा कीट व्याधि या बीमारियां को
1: नहीं
0: लागे।
1: और जो बीमारी नहीं लागे तो आप मान चालो कि इरमाने कोई तरह दवा छिड़कना पड़े को नहीं और महंगा कीटनाशक है बे आपने छिड़कना पड़े को नहीं और ना ही कोई तरह रो आपने ज़्यादा मेहनत करनी पड़े क्योंकि बीज अगर बढ़िया हो सी नहीं तो क्या करे कि सूगलो बीज हुए वो खेत ने ले बैठे तो आपने अठे सूगलो बीज राखनो ही को नहीं पेड़ तो बीज बढ़िया लाओ बढ़िया क्वालिटी लाओ और बिने बाद में बिने अगर उपचारित कर लेवा तो वो बीज है सोने में सुहागे रो काम करे और मेरी फसल जिकी है बा क्या है बहुत ही शांत रिबा होवे।
0: तो आपने वो ध्यान रखना है कि बीज उपचार करना है और बीज ने दवाई लगाने के बाद में हमेशा छाया में सुखावना है।
1: और अबे देखो जिकी आप बात कही थी कि दिन माने तावड़ो पड़े सिंजा पड़ते ही बादल वही हो जावे कहीं आंधी आवे तो तावड़ो पड़े तो तावड़ो तो देखो अबे काल भी पड़ सके भाई लोग यहाँ ना सोचो कि अंधड़ आ गया है या बादल ही होगी तो रोज रहेला क्योंकि जेठ रो महीना है और जेठ महीने और मैं तो मौसम मेवा है क्यों क्योंकि आपारे अठे छह ऋतुआ हुए छौरी छह ऋतुआ रो आनंद आपा लेवा। ठीक है ये तावड़े रो अपन बचाव राखना है लू रो बचाव राखना है लू रा थपेड़ा बचाव राखना
0: है। भाई एक वो गीत है नी तावड़ो मंदो पड़ जा रहे
1: हाँ
0: वो कोई गीत लो सुनाओ नहीं आज
1: तो अबार लो सुनाओ साओ गीत

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के।

0: अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है। रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: तो नमा में भाई संदेश सुने संदेशों पर लिया पा तावड़ी आरो गीत भी सुने। तो ए जिको गीत संगीत है या अपा चर्चा करी तो अपर अठे ओ जिको मैं जिया बात करी कि मौसम जको है दिन में कई बार तेवर बदल रहे है तो ए सब जलवायु परिवर्तन रा परिणाम है। जलवायु रो असंतुलन हो गयो इरो तालमेल सगड़ो बिगड़ गयो अपा मिनख जाति जकी है आ बिगाड़ दियो और मिनख जाति ही ई जलवायु परिवर्तन रो जको संकट है इन्हें दूर कर सके।
1: पण इरे अलावा भी जलवायु परिवर्तन का कई दूजा भी कारण होया करे भी क्या कारण है सो क्या बचाव हो सके।

0: सबरी जानकारी लेकर आ रहा है आज वार्ता रूप रे माने कविता चौहान और वार्ता सुनो सा जलवायु परिवर्तन र कृषि माथे क्या प्रभाव पड़े सुनो सा वार्ता।
1: हमारे किसान भाई कई पीढ़ियों से खेती के लिए मौसमी बरसात पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अभी जलवायु परिवर्तन के कारण, बदलते मौसम के कारण उन्हें काफी नुकसान हो पा रहा है। देश में फसल उत्पादन में उतार चढ़ाव का कारण कम वर्षा, अत्यधिक नमी, फसलों पर कीड़े लगना, बेमौसम बारिश होना, बाढ़ व सूखा, ओलों की बुछार आदि मुख्य है। राजस्थान की जलवायु मुख्यतः अर्ध शुष्क और शुष्क श्रेणियों में आती है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में ग्रीष्मकाल के दौरान तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। कुछ एरिया में बहुत ज्यादा अत्यधिक तीव्रता से बारिश हो जाएगी, कहीं पर सूखा ही पड़ेगा। इसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत में जलवायु अनुकूल कृषि करना प्रभावशील होगा। जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, बल्कि वर्तमान की ठोस सच्चाई है और राजस्थान जैसे संवेदनशील राज्य में इसके प्रभाव पहले से स्पष्ट हो चुके हैं। यहाँ की लगभग 65% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है और जब वर्षा का स्वरूप बदलता है, तापमान बढ़ता है या मानसून अस्थिर होता है तो पूरे ग्रामीण तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। राज्य के पश्चिमी हिस्सों में जहां पहले ही पानी की भारी कमी है, जलवायु परिवर्तन ने सिंचाई प्रणालियों को अस्थिर कर दिया है। मिट्टी की नमी में कमी, भूमिगत जल स्तर का गिरना, हमारे जलाशय जैसे कुएं हैं इनका सूख जाना, ये सभी संकेत देते हैं कि जलवायु संकट वास्तविक है। जलवायु परिवर्तन का मतलब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है। जब किसी क्षेत्र विशेष में वहां के औसत मौसम में परिवर्तन होता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन कई वर्षों से धीरे धीरे होता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधों की लगातार कटाई, जंगल की खेती, मकान बनाने के लिए उपयोग करने के कारण इसका प्रभाव जलवायु स्तर पर पड़ने लगा है। जलवायु परिवर्तन के खूब सारे कारण हैं। सबसे जो मुख्य कारण हम कहें तो मनुष्य ही है। जलवायु परिवर्तन मनुष्य के द्वारा ही हुआ है, पारिस्थितिक असंतुलन हुआ है। दूसरा कारण है औद्योगिकरण। जलवायु परिवर्तन में औद्योगिकरण की बड़ी भूमिका है। विभिन्न प्रकार की मीलें जो हमारे पर्यावरण में है, जिनसे मीलों से विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अनेक प्रकार की अन्य जहरीली गैसें और धूल कण जो हवा में छोड़ती है, जो वायुमंडल में काफी वर्षों तक विद्यमान रहती है, इससे भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। हमारे वनों की कटाई बहुत ज्यादा होती है। आवास के लिए, खेती के लिए लकड़ी और अन्य वन संसाधनों की चाह में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे तापमान में वृद्धि, मृदा क्षरण हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीवों का ह्रास हो रहा है आदि समस्या उत्पन्न हो रही है। जो अनेक प्रकार के जो पक्षी होते हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो हानिकारक है उनको खाते हैं, तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तीसरा प्रश्न कहना चाहूंगी, रासायनिक कीटनाशकों व उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है। हम आज बाजार में जाते हैं, रासायनिक उर्वरकों की मांग इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि आज बाजार में 1000 से भी अधिक प्रकार के कीटनाशी उपलब्ध है, जिससे हमें कैंसर जैसी बीमारियों का भी सामना कर रहा है। आज इस समय में कैंसर एक बहुत ही आम बीमारी हो गई है। जैसे जैसे इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वायु, जल तथा भूमि में इनकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है, जो कि पर्यावरण को निरंतर प्रदूषित कर घातक स्थिति में पहुंचा रहे हैं। अब मैं हमारे किसान भाई को बताना चाहूंगी कि जलवायु परिवर्तन की प्रभाव क्या है, इस जलवायु परिवर्तन का हमारी दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि हमारा जो तापमान है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें एक विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। वायुमंडल का तापमान बढ़ने से उनके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

तथा उत्पादन में भी भारी कमी आती है, जैसे कि गेहूं, जौ, सरसा, आलू को कब तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान से इनके फसलों के उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे किसान भाइयों को जो मुनाफा मिलना चाहिए वो मुनाफा नहीं मिल पाता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वर्षा की मात्रा पर भी पड़ता है। वर्षा की मात्रा व वर्षा में परिवर्तन से मृदा क्षरण और मिट्टी की नमी पर प्रभाव पड़ता है। सभी पौधों को जीवित रखने के लिए कम से कम पानी की आवश्यकता तो रहती है, बहुत अधिक या बहुत कम वर्षा भी फसलों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी औसत वर्षा में गिरावट होती है, वर्षा वितरण में असमानता होती है, कहीं कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं कहीं पर बारिश की तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि वो बारिश किसानों के लिए फायदेमंद नहीं होती है, वो बाढ़ का रूप ले लेती है। जहाँ पर मानसून समय पर आना चाहिए वहाँ पर मानसून 10-10 दिनों के बाद आता है और सूखा पड़ रहा है, अतिवृष्टि पड़ रही है, बाढ़ आ रही है, ओलावृष्टि हो रही है, पाला पड़ रहा है, फसल उत्पादन में गिरावट आती है। जैसे गेहूं है, चना है, सरसों है जैसी फसलों में औसतन 15-20% तक उत्पादन की कमी देखी गई है। अधिक तापमान बढ़ने से मक्का, धान या ज्वार आदि फसलों का क्षरण हो सकता है। इन फसलों में अधिक तापमान के कारण दाना नहीं बनता है या फिर बहुत ही कम बनता है। कपास, मक्का जैसी फसलों को महत्वपूर्ण चरणों में गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमारी जो फसल चक्र है उसमें भी अनिश्चितता पाई गई है। खरीफ सीजन में मानसून की देरी से जो बुआई है हमारी 10-10 दिन बाद हो पाती है, काफ़ी विलंब हो जाता है उससे। कई बार पर्याप्त वर्षा न मिलने से बीज हमारा अंकुरण भी नहीं हो पाता है। राजस्थान में पारंपरिक फसलों में गिरावट आ गई है। हमारी जो किसान भाई जो पहले से पारंपरिक फसल लेते आए हैं जैसे कि बाजरा, मूंग, मोठ, अब वो पहले से कम बोने लगे हैं। अत्यधिक तापमान और लू के कारण पशु स्वास्थ्य में गिरावट दिखी गई है। दुग्ध उत्पादन है उसमें कमी पाई जाती है, पशुओं में रोग बहुत ज़्यादा हो जाता है। सूखे की वजह से चारे की उपलब्धता नहीं हो पाती है, 30-40% तक चारे की उपलब्धता में कमी पाई गई है। विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पशुओं के लिए खाने की सामग्री जो होती है चारा, वो भी आसानी से नहीं मिल पाता है। मैं किसान भाइयों को सिंचाई संकट के लिए भी बताना चाहूँगी। भूमिगत जल स्तर में औसतन 2-5 मीटर तक प्रति दशक की गिरावट देखी गई है। हमारे कुएं हैं, नलकूप है, सूखने लगे हैं। जो नहर सिंचाई प्रणाली है उस पर दबाव पड़ा है जिससे पानी की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। कुएं वगैरह सूख चुके हैं, हमारे किसान भाइयों को नहर पर निर्भर रहना पड़ता है। नहर का पानी एक हफ्ते में काफ़ी दिनों के अंतराल में उनको मिलता है। हम जलवायु के प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं? अब ये आवश्यक हो गया है कि कृषि और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में हम एक ऐसी दीर्घकालिक योजना बनाएं जिससे कि हमारे किसान भाइयों को नुकसान कम हो और फसल उत्पादन में उनको फायदा भी हो। सबसे पहले जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो बदलती वर्षा हो रही है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारे किसान भाई जो पारंपरिक फसल चक्र है जो कि अब कम हो गया है, उसके लिए हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि जो किसान भाई है वो सूखा सहिष्णु फसल या अल्पकालिक फसल, अल्पकालिक फसल मतलब जो कि कम ड्यूरेशन की होती है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, इन फसलों की बुआई करें हमारे किसान भाई। और फसल विविधीकरण, किसान भाई एक फसल पर निर्भर न रहे, खेत में सिर्फ एक फसल लगाते हैं, कहीं पे अतिवृष्टि ओलावृष्टि हो जाती है, उनकी पूरी फसल चौपट हो जाती है, तो उससे बचने के लिए किसान भाई एक खेत में 3 या 4 प्रकार की फसलें लगाएं, जिससे कि उनको नुकसान यदि एक फसल के लिए होता हो तो अन्य फसलें उनको फायदा दें। तीसरा मैं कहूँगी कि किसान भाई हमारे बागवानी, औषधीय पौधे या फिर ऐसी फसलें जिनको कि कम जल की आवश्यकता होती है, ऐसी फसलों को शामिल करें। औषधीय फसलें मैं कहना चाहूँगी जैसे कि एलोवेरा है, अश्वगंधा है, ये सब गोल की खेती करें, या फिर बागवानी में मैं कहूँगी अनार की खेती, बेर की खेती आदि करना किसानों को ज़्यादा फायदेमंद होगा। किसान भाई जल प्रबंधन सुधार भी करें तो भी वो जल की काफ़ी बचत कर सकते हैं। जैसे कि हमारी वर्षा की असमानता रहती है, भू जल स्तर में गिरावट हो पाई है, उससे बचने के लिए वर्षा जल को संचय करें। वर्षा जल संचयन को गांव और खेत स्तर पर अनिवार्य कर दें। अपने खेत पे किस

0: भाई फार्म पॉन्ड या फिर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आवश्यक रूप से बनाएं, बूंद बूंद सिंचाई या फिर फव्वारा जो प्रवृत्ति है, जो प्रणाली है, इसको अपनाएं। मतलब कम बूंदों में अच्छी फसल किसानों को प्राप्त हो। इससे क्या होगा कि हमारी जो सिंचाई है उसमें जल की बचत होगी, भूजल स्तर होगा हमारा ऊपर आएगा, जो किसान भाइयों की फसल में लागत आती है उसमें कमी आएगी। इन रणनीतियों का उपयोग करके किसान जोखिम कम कर सकते हैं।
1: तो साहब आप वार्ता सुने कविता चौहानरी, जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव। बिना माने आप बताए थो कि जलवायु परिवर्तन सो कृषि माथे क्या प्रभाव पड़े, बूंद बूंद की सिंचाई है बा किण भात सु करनी चीजें क्यों करनी चीजें, इन सो आपारे पानी माथे कहीं प्रभाव पड़ेला। तो वार्ता बड़ी शांत रही, पर आपा कविता चौहान ने एक गीत के माध्यम से धन्यवाद देवा सोना सौ गीत।

यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और पानी के भीतर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। महासागर पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करते हैं, लेकिन आज वो गर्मी, अम्लीकरण और प्रदूषण जैसे बड़े संकटों का सामना कर रहे हैं। कोरल रीफ, मैनग्रोव और समुद्री घास जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरण तेजी से नष्ट हो रहे हैं, लेकिन महासागर, हवा और लहरों से स्वच्छ ऊर्जा, स्वस्थ मछली पकड़ने के जरिए और समुद्री जीवन के लिए संरक्षित क्षेत्र देकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद भी करते हैं। इसलिए जलवायु को स्थिर और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए महासागर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ ने कुछ ही दशकों में लगभग 50% कोरल खो दिए हैं।

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: है
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: बजरंग भाई, एक बात बताऊं मैं आपने कि महाराज की बाड़ी रमाइने में कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाई।
3: अच्छा,
2: लौकी है, तोरी है, काकड़ी है, सब्जियां तो बहुत हुई थी, सांतरी हुई, पर समस्या एक होगी कि हमारे क्या है कि थोड़ा लापरवाही रह चलते मैं क्या है कि बिना दोपहर मैंने तोड़ ली।
3: अच्छा,
2: और दोपहर में तोड़ने से कहीं है कि थोड़े देर पछे मैं देखियो सिंजिया ने काम में ले ले सा डेरी लगा ली, पर पछे आ देखी कि भी चमक है बाबी खत्म होगी और ताजगी भी कोनी रही जिकी होनी चाहिए स्थिति।
3: तो देखो, ई कद्दू वर्गीय सब्जियां ही तोड़ाई करती वेड़ा आपने कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिया थे बात बताई है तो चमक बरकरार रखनी है, अच्छी अपन ने नगद आमदनी करनी है तो कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, किसान भाई ने भी बतानी चाहूँ, थाने भी बतानी चाहूँ कि आप

0: ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿ ਬੁਆਈ ਕਰੀ ਹੈ ਕੱਦੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਨੇ ਮੰਡੀ ਤਾਈਂ ਪੁਗਾਵਾਂ ਤੋ ਤੁੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੜੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈ ਆਨੇ ਸਿੱਧੀ ਤਾਵੜੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਕੋਨੀ ਹੈ ਔਰ ਤੋੜਤੀ ਵੇੜਾ ਬਾਨੇ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਜਾਂ ਛਾਂਦਾਰ ਸਥਾਨ ਪਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੋ ਤਾਵੜੋ ਹੈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵੇ ਮੁਰਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ
1: ਸਹੀ ਬਾਤ
0: ਤੋ ਆਪਾਂ ਨੇ तुड़ाई जकी है बा तावड़े में कोनी करनी या तो दिनुगे वेड़ा में करनी है
1: या
0: सिंजा वेड़ा में करनी है और सिंजा वेड़ा में करा तो दिन उगता ही अपने मंडी ताई या दुकान ताई जठे भी अपने भी विक्रय करना है बटे ताई पुगावनी है इनसु सब्जी में नमी बनी ओड़ी रेवेला
1: और सागे सागे एक बात और मारे ध्यान में आई थी पछे के इन्हें हाथों नहीं तोड़ पर कैंची है या चाकू इसको काट लेनी चाहिए क्योंकि डंठल जिको है नी जिको भी सो सब्जी सो चुपियोड़ो है बिना चुपियोड़ो ही रहन देना चाहिए कि बिना बहुत अगर उतर जावे नी तो फिर आ साग जी की है बात जल्दी बेकार हो जाया करे तो डंठल सागे रहन सो सब्जी जी की है बात बैगी सी खराब होवे को नी और मंडीर मन ले जावा बी टाइम पैकिंग है बीरो तरीको भी ढंग से होना चाहिए कि टोकरी है हवादार होनी चाहिए या जिकी भी छबड़ी है बा हवादार हुए तो भी सु क्या साग माथे साग सब्जी जिकी भी मन भरा बा खराब हुए कोने
0: आ बात है ठीक है बोरिया में जब आप सब्जियां भर ले जा तो सब्जियां दब जावे बा में दाग पड़ जावे और दाग वाली सब्जी है बीरा भाव जका है बे आधा हो जावे
1: और मेरे अलावा एक चीज और है कि आपा साग सब्जी अगर तोड़ा बिसु पहला बीरे माने सिंजा भी बेड़ा पानी दे देवानी तो सब्जी रे माने थोड़ो नई चेतना आ जावे यानी बीरे में चमक और ज़्यादा हो जावे और जब मैं पानी की बात करी तो एक बात और दिमाग में आई है कि आपा पानी रो बचत करानी तो भाई पानी रो उत्पादन मानो भी नहीं
0: बिल्कुल पानी जको है वो कोई क्षेत्र मायने तो कोई फैक्ट्री में तो बने को
1: नहीं
0: पानी जको है वो कुदरती देन है बीरो आपा सम्मान करें बीरो आपा सोच समझ उपयोग करा बूंद बूंद उपयोग जको है वो सोच र करा तो बढ़िया रहे
1: तो अबे मैं आपने ले चलू सोच समझ करी बात जने सोच समझ रे गीत रेखानी
0: सुनाओ सा
1: सुन सा गीत

0: वासना मम्मी भाई गीत तो बढ़िया सुनायो चिरमियाड़ो।
1: पर एक बढ़िया बात और मैं आपने सुनाऊं कि आपारी भारत सरकार है एक नो क्रांतिकारी कदम उठाए है और वह है योजना योजना मनरेगा जी जगह ली है और वह है 1 जुलाई 2026 पूरे देश में लागू हो रही है जगह नाम है जी राम जी योजना। ठीक है ना जी राम जी योजना
0: नमामि भाई इरो पूरो नाम है विकसित भारत जी राम जी योजना।
1: और ये सबसे बड़ी विशेषता है पहला जट है 100 दिन काम मिलिया करता था और बीस जगह अब 125 दिन काम मिलेला यानी 25 दिन एक्स्ट्रा काम मिलेला ग्रामीण परिवार इसको आय बढ़ेला और ये उद्देश्य गांव रे माई टिकाऊ संपत्ति बनावनो और खेती ने मजबूत बनावनो है। तो अब मैं सिंजारी बेड़ा होगी है और सगला भाई उड़ीक रिया है भजन सारो तो सुनो सहो भजन।

0: तो सा अबे चालन सीख देव जो सा आप अपना हितालु साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य
1: और बजरंग सारस्वत ने आज्ञा देव सा
0: घणा घणा राम राम, राम।

अभी ग्रामीण भाइयों ने सुना अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामरू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत।

अनूप जलोटा के स्वर में गंगा स्तुति सुनने के बाद सुगम संगीत कार्यक्रम में अब हम सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये मीरा भजन।

महेंद्र पाल के स्वर में गाई कबीर की इस भक्ति रचना के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आप सुधी श्रोता ये जानते होंगे कि आज भारतीय हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार पंकज उधास का, क्षमा करें, मनहर उधास का जन्मदिन है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मनहर उधास के गाए कुछ फिल्मी गीत।

मनहर उदास का गाया ये था फिल्म आप तो ऐसे न थे का गीत। गीत रचना निदा फाजली की थी और संगीत रचना उषा खन्ना की थी। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म अभिमान में ये आवाजें हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और एसडी बर्मन का संगीत।

आशा भोसले और मनहर उदास को अभी आपने सुना फिल्म होटल में। हम आपको बताना चाहते हैं कि मनहर उदास का जन्म आज ही के दिन यानी कि 13 मई 1943 को ब्रिटिशकालीन भारत में बड़ौदा राज्य के सावरकुंडला नामक स्थान में हुआ था।

आप सुन रहे हैं होटल फिल्म का ये गीत आशा भोसले और मनहर उदास की आवाजों में। इंदिवर की गीत रचना और उषा खन्ना का संगीत

श्रोताओं, मनहर उदास को संगीत से बहुत ही रुझान था और उसमें एक विश्वास भी था, और उनका ये विश्वास रंग लाया और उनको जो फिल्म मिली पहली उसका नाम था विश्वास, और उसका गाना था आपसे हमको पिछड़े हुए एक जमाना बीत गया। बहरहाल हम आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास और साधना सरगम की आवाज़ों में घुंघरू फिल्म का ये गीत। अनजान की गीत रचना और कल्याण जी आनंद जी की संगीत रचना।

भाई उदास और जीतू बेन उदास के सबसे बड़े बेटे और गायक पंकज उदास और निर्मल उदास के बड़े भाई हैं। ये है अनुराधा पौडवाल और मनहर के साथ साथियों की आवाजों में हीरो फिल्म का गीत। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और कार्यक्रम में ये आखिरी गीत मनहर उदास अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, ये गीत हर जीवन साथी के लिए महत्वपूर्ण है और दाम्पत्य जीवन के लिए ये गीत एक अमृत सा लगता है। फिल्म का नाम अमृत। गीतकार एक बार फिर आनंद बख्शी और संगीतकार भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

तो दोस्तों ये था आज का फिल्म संगीत, और आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में गायक मनहर ओधास के जन्मदिन के अवसर पर हमने आपको सुनवाए उनके गाए कुछ फिल्मी गीत। फिल्म अमृत के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 8:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए लोक संगीत।

पद्मा व्यास के स्वर में गाए इस लोकगीत के बाद कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं ललित कुमार व्यास और उनकी पार्टी का गाया ये लोकगीत।

0: स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ललित कुमार व्यास और उनकी पार्टी का गाया इस हिचकी लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 8:45 होने को हैं अब समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज 8:09 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। CBI इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के

0: विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं।

0: असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite.

सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता और निर्देशक असित सेन की जयंती है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं असित सेन अभिनीत फिल्म अनुरोध का ये गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, असित सेन का अभिनय हमेशा याद रहता है। ये जो गाना है ये किसी रेडियो स्टेशन में फिल्माया गया है और इस गाने में एक रूम में असित सेन दिखाई देते हैं।
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको

ये था असित सेन अभिनीत फिल्म अनुरोध का गीत, आनंद बख्शी की गीत रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत रचना। कार्यक्रम की शुरुआत में असित सेन की जयंती के अवसर पर उनको याद करते हुए हमने आपको सुनवाया ये गीत। लीजिए अब सुनिए फिल्म मन का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

यह है कार्यक्रम का आखिरी गीत, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में। फिल्म का नाम है जीना सिर्फ मेरे लिए। समीर की गीत रचना और नदीम श्रवण की संगीत रचना।

जीना सिर्फ मेरे लिए फिल्म के इस शीर्षक गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 9:30 होने को हैं। अब चर्चा का विषय है कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: Çakçaka bir şey.
1: दुनिया की नब्ज पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक आज

0: एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मूज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरते, तेल की खपत कम करें खाने के तेल, तो इससे देश और हमारी शहर दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमी

0: जो लार्ज इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहाँ खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी बहुत भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, इराक, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है, तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35,000 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे

तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का। तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन, अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए। बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट, तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरमेंट।

0: हाय, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट, तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो 1 पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली, चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जो पोटेंशियल सीबीजी का हो, वो सब कुछ हार्नेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी आवश्यकताएं आज ही बहुत बड़ी हैं और आगे आने वाले दिनों में, जबकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक है तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है, जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है, और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से, हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है, और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की काफी गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारे

0: ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है, उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है। एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है, जैसे क्वाड के अंदर है, उसको साथ में, इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है, जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है, कि आज से अगर 15 साल बाद 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है, तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है, खुले प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद ये है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुल के जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए, उनके विचार जो है वो आम आदमी साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by a strong policy framework and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी

0: तक प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसको यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है। तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सके। तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा। तो मैं सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है, तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की, और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते, जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाइड डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं यहाँ ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए ये है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम

0: जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते। और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है। और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा, ये जब भी युद्ध समाप्त होता है ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा। तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा। और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं, या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है। और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट हैं तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो, या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
3: थैंक यू,
4: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
5: चर्चा का विषय है।
6: चर्चा का विषय है कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे। मीडियम वेव 215.05 मीटर पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत पाकीज़ा फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, गीत रचना कैफी आजमी की और संगीत रचना गुलाम मोहम्मद की।

लता मंगेशकर को फिल्म पाकीज़ा में सुनने के बाद लीजिए अब सुनिए कभी कभी फिल्म का ये गीत मुकेश के स्वर में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं और खय्याम का दिलकश संगीत।

बहुत ही सरलता से, बहुत ही सादगी से क्या खूब बयां किया है गीतकार साहिर लुधियानवी ने एक इंसान की और एक शायर की सच्चाई। ऐसे लिखने वाले बहुत कम होते हैं और लिखते हैं वो उनका लिखा अमर हो जाता है।

दोस्तों, प्यार बस किसी दूसरे दिल में अपना प्रतिरूप ही देखता है और उसी में रहना चाहता है।

जो आपको महसूस हुआ है और आनंद बख्शी के इस गीत में जिसे हमने लिया है फिल्म महबूबा से, उसको सुनकर आपको कैसा लगता है?

दोस्तों फिल्म जूली के उस गीत में आपको एक दिल की रोमानियत नजर आई थी, वहीं फिल्म महबूबा के इस गीत में आनंद बख्शी के लिखे इस गीत में दिल का दर्द है, दिल की प्यास है।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये था महबूबा फिल्म का गीत, आनंद बख्शी के बोल थे और राहुल देव बर्मन का दिलकश संगीत। और कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में पगला कहीं का फिल्म का ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, चाहकर भी हम कभी अपनों को भुला नहीं सकते। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये था पगला कहीं का फिल्म का गीत, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में दोस्ती फिल्म का ये गीत। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हम याद करने बैठे तो सब याद आता है, बात मोहब्बत की हो, दुश्मनी की हो, या बात दोस्ती की हो, या फिर हो दुनियादारी की।

दोस्तों, जब एक इंसान का दर्द एक इंसान समझ नहीं पाता है तो वो दर्द बनकर मजरूह सुल्तानपुरी जैसे गीतकार की कलम से उभर आता है।

श्रोताओं, किसी ने खूब ही लिखा है कि हम यदि किसी के लिए खुश नसीब नहीं बन सकते तो हक नहीं कि हम किसी के लिए बदनसीब बने।

तो दोस्तों ये था आज का फिल्म संगीत। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये फिल्म संगीत पसंद आया होगा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गई फिल्म दोस्ती के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शौकत हुसैन खां का ख्याल पूरिया में शास्त्रीय गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना शौकत हुसैन खां का ख्याल पूरिया में शास्त्रीय गायन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार

0: अधिकार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera Semi-High-Speed Double Line Project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country.